0: rent, entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
1: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
2: हाँ.
1: घर रिलोकेट करनी है?
2: हाँ.
1: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
2: हाँ भाई हाँ.
1: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
0: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
3: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
4: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
5: Sunita, tumhare bete ke marks kafi improve hue hain na recently?
6: Haan, bas thoda right guidance mil gaya hai.
5: Same teacher, same school, phir bhi mera beta struggle kar raha hai.
6: Different school ka nahi hai, concept clarity ka hota hai.
7: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper aur McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math aur English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support, aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
8: You're earning well, but are you paying more taxes than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG FinTax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG FinTax. Plan smart, save more.
9: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
10: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
9: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
10: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
9: और एंटरटेनमेंट,
10: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
9: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
10: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
11: जिंदगी एक रंगमंच है
12: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
7: कॉल 972-897-1530, firstunitedtexastitle.com।

हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाई। मुझे आते आते थोड़ी सी देर हो गई। आई होप आप गाने ज़रूर एंजॉय कर रहे थे। थोड़ा पुराना ज़माने का गाना चल रहा था, कुछ गुरुदत्त वाली वाइब्स चल रही थी। लेकिन गाइस, वी आर हियर एंड दिस इज एपी द हिपी, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट दिस ब्यूटिफुल जर्नी स्टार्टेड।

गाइस, सपने देखने हम सबको पसंद है और सबका एक ही सपना होता है कि भाई अपना घर हो सुंदर सा, उसमें सुंदर सुंदर हमारी चीज़ें हो, डेकोर थिंग्स हो, हम अपनी फैमिली के साथ रहे। अगर वही आपका भी वही सपना है, देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट ड्रीम होम मॉर्गेज। योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मॉर्गेज। सिंस 1998 ड्रीम होम मॉर्गेज हैज़ हेल्प फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप इन टू अ रियालिटी विथ पर्सनलाइज मॉर्गेज सोल्यूशंस एंड ए स्मूथ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस। दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स एंड देयर एक्सपीरियंस टीम इज कमिटिंग टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शंस दैट विल हेल्प यू बाय योर फर्स्ट हाउस, वेदर यू वॉन्ट टू बाय योर वेदर योर फर्स्ट टाइम होम बायर, अपग्रेडिंग और रिफाइनेंसिंग। स्टार्ट योर होम ओनरशिप जर्नी विथ कॉन्फिडेंस टू डे। कॉल 972-245-5626 और विजिट ड्रीम होम मॉर्गेज.com फॉर मोर डिटेल्स।

0: Basanti, no dance in front of these dogs.
1: Basanti, no dance

0: भाई ये सुनते सुनते मुझे ये ध्यान आया कि कई बार जो चीज़ हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, इट डजेंट हैव दैट इंटेंसिटी. आई मीन हिंदी में जो इंटेंसिटी आती है वो इंग्लिश में सेम ट्रांसलेट करके यार वो इंटेंसिटी नहीं आती है. अगर मैं बोलूँ बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, कितना ड्रामेटिक नहीं लगता. लेकिन यहाँ पे अगर हम बोलेंगे बसंती नो डोंट डांस इन फ्रंट ऑफ दीज डॉग्स, तो इट जस्ट साउंड्स लाइक यू आर जस्ट टेलिंग अ 5-year-old किड, भाई डोंट डॉग डांस इन फ्रंट ऑफ द डॉग्स. मतलब यू नो लाइक इट डजंट हैव दैट वाइब, इट डजंट हैव दैट स्ट्रेंथ, है ना. गाइज यू आर लिसनिंग टू इपी द हिपी ऑन फनीशो रेडियो 104.9 FM एंड दिस इज माई शो एन इवनिंग इन डैलस. वी आर अबाउट टू गो इन टू ब्रेक एंड देन आई विल सी यू सून. बाय बाय.
1: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
2: Calculating route, rerouting, rerouting.
1: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
2: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
1: क्यों?
2: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
1: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
3: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
2: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
4: आर यू गेटिंग द बेस्ट वैल्यू ऑन योर लाइफ इंश्योरेंस और एन्युइटी नीड्स? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers. So you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
5: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
6: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
7: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
8: Excuse me. It's called being loyal.
7: It's called being predictable.
8: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
7: And what's so special at Neon Cactus?
8: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
7: Not bad.
8: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
7: Okay, this I didn't expect from you.
8: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
9: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
10: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30.

0: Thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
1: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards.
0: Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
7: Hum huma, huma hum huma, huma hum huma, huma hum.

भाई कैसे हैं आप सभी लोग. दिस इज इबी द हिप्पी एंड यू ऑल आर लिसनिंग टू इवनिंग इन डैलस ओनली हियर ऑन फनेजा 104.9 FM. अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आज बात कम क्यों कर रही हूँ, क्योंकि भाई आज मैं बहुत भागा दौड़ी कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं अपनी एनर्जी थोड़ी सी प्रिजर्व कर रही हूँ, जैसे आप सभी को करनी चाहिए. जब आपको बहुत सारी भागा दौड़ी करनी पड़ती है, देन यू हैव टू सेव दैट एनर्जी. एंड यू नो वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सेव एनर्जी इज काइंड ऑफ डेलीगेट ऑल योर वर्क टू समवन. सो इन दिस केस इफ यू वॉन्ट टू ग्रो योर फाइनेंसेस, एंड यू नो नोबडी गेट्स रिच इन टूडेज वर्ल्ड बाय जस्ट सेविंग. दो दो पैसे आप जोड़ोगे तो आप सेव करोगे, ठीक है, बट यू आर नॉट गोना गेट रिच. द ओनली वे टू गेट रिच एंड अचीव ऑल योर ड्रीम्स इज बाय इन्वेस्टिंग. एंड दिस इज वेयर माई टाइम एक्विटी कम्स इन टू प्ले, लेड बाय CPA सुधीर पाए. दे हेल्प इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. वेदर यू आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ, रिटायरमेंट और ग्रोइंग योर investments, my time equity offers personalized solutions designed around your goals. Call 469-702-1272 या फिर विजिट mytimeequity.com. अगर आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है एंड यू वांट टू नो हाउ टू गेट रिच एंड नॉट रिलाई ऑन योर सैलरी या फिर आपकी सेविंग्स, देन दिस इज वेयर यू शुड बी गोइंग. वी गोना लिसन टू अ सॉन्ग एंड देन कम बैक. एंड जैसे आपको पता ही है, 8 o'clock इज आवर गिव अवे टाइम. And so we will listen to the giveaway when you come back. Tab tak ke liye aap ye gana enjoy kariye.

0: Guys, we're about to go into a break. लेकिन break से आने के बाद we are gonna play. You know what the time it is gonna be after break? Yes, it's gonna be giveaway time. We're gonna play the copycat challenge. Yes, yes, yes. So stay tuned because I have two really cool songs and two amazing giveaways. Actually, दो नहीं, तीन तीन giveaway है. So come back in 3, 2, 1.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: हीरे मोती मैना चाहूं।
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
5: तारा वो तारा हर तारा।
6: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
7: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
8: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
9: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
10: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. Honestly, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स what योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
11: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इन टू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 McKinney.
12: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
13: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
14: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
15: It's Lawson.
14: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
15: It's Lawson.
14: Daddy, what is the law?
16: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
17: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Fun Asia Radio.
0: Friends, we are back. और जैसे मैंने आपको बोला था, गिव अवे होने वाला है 8 बजे, वो मैं जरूर खेलूंगी, लेकिन एक गाने के बाद। तब तक आप ये गाना सुनिए। एंड यू गाइज आर लिसनिंग टू इपी द हिपी ऑन Fun Asia Radio 104.9 FM एंड दिस इज माई शो एन इवनिंग।

गाइस, जैसे मैंने बोला था, हम गिव अवे खेलने वाले हैं. एंड अभी एज मैं वो बता तो दूं कि गिव अवे है क्या. गाइस, दिस पहला गिव अवे इज फ्रॉम द फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को. अगर आप कोई भी देसी स्टाइल का पिज्जा ट्राई करना चाहते हैं, वेदर इट्स अचारी पनीर पिज्जा या फिर तंदूरी चिकन पिज्जा, ऑल द देसी फ्लेवर्स पैक टुगेदर इन पिज्जा फॉर्म, देन यू हैव टू गो एंड ट्राई फन पिज्जा किचन. दे ऑल्सो हैव ए रियली डिलिशियस एंड माउथ वाटरिंग चीज केक, एंड देर इज अ स्लाइस वेटिंग फॉर यू एट फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को. यू कैन ऑल्सो विजिट funpizzakitchen.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन्यू एंड स्टफ. तो आप क्या जीत सकते हैं गिव अवे में? यू कैन विन ए $10 गिफ्ट कार्ड बाय आंसरिंग द सिंपल क्वेश्चन. अगर आपने मेरा गिव अवे खेला है, देन यू नो दैट वट वी आर गोइंग टू प्ले इज आई प्ले यू एन इंग्लिश सॉन्ग और एनी अदर सॉन्ग फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड यू हैव टू टेल मी द बॉलीवुड कॉपी ऑफ दैट सॉन्ग. ओके, दिस वन इज वेरी वेरी इजी, वेरी इजी. आई मीन, आप सुन के आई एम श्योर यू विल गेट इट इन इंस्टेंटली. तो गाइज, माई नंबर इज 9722355555. अगर आपका कॉल लग जाता है, देन प्लीज मेक श्योर दैट द रेडियो इन द बैकग्राउंड इज टर्नड ऑफ, नहीं तो फिर वो क्लैश करता है हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ, एंड देन आई कैन बेली हेयर यू एंड इट काइंड ऑफ गेट्स केओटिक. देन आई एम फोर्स टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉल. सो मेक श्योर योर रेडियो वॉल्यूम इन द बैकग्राउंड इज ऑफ वेन वेन एंड इफ द कॉल कनेक्ट्स. ठीक है, एंड हियर वी गो. दिस इज सो इजी, यू आर गोना गेट इट.

0: you for calling. Can you hear me?
1: Hey, can you hear me?
0: Yes, I can hear you. Can you hear me?
1: Let me just put my radio off, volume off. Just a second.
0: Yes, great. And then आप अपना नाम बताइए पहले तो.
1: मेरा नाम भरत देवानी.
0: भरत जी, okay. आपने कल भी call किया था ना?
1: जी मैम.
0: Did you win?
1: Yes, India Bazaar से hamper.
0: So I'm sorry, we have to go on to another caller. We have a rule ki, you know, if you won a giveaway in the last 1 month, then make sure that, you know, we give a chance to someone.
1: Okay, that's completely fine. Everybody should get a chance.
0: Right? Thank you so much for understanding. But thank you for calling. Yeah. Bye. Hi, so then, you're on air. Thank you for calling. Can you hear me?
1: Yeah, hi. Good evening.
0: Hi.
1: Yeah,
0: good evening. पहले तो अपना नाम बताइए and then tell me, आपने पिछले एक महीने में कोई giveaway तो नहीं जीता ना? हमारी तरफ से
1: नो.
0: ओके ग्रेट. अपना नाम बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल.
1: आई एम राजेश.
0: ओके राजेश जी, लेट्स गो. डू यू हैव द आंसर?
1: इज इट कोई मिल गया?
0: यस, इट इज टोटली कोई मिल गया. वूहू, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव वन ए $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को. अभी भाई, अब हमारे ऑडियंस मेंबर्स के लिए थोड़ा सा गा भी देते हैं. क्यों? लेट्स सिंग टू लाइंस. रेडी? 1, 2, 3. कोई मिल गया, कोई मिल गया, मेरा दिल. अरे यार, मैं अकेले ही गा रही हूँ, मेरे साथ भी गा लो यार.
1: मैं आपने मूड खराब नहीं करना चाहता, आप ही गाओ.
0: वेल भाई, ऐसे नहीं होगा, कोई बात नहीं, बट इट्स ओके, आई अप्रिशिएट द ऑनेस्टी. तो राजेश जी, प्लीज स्टे ऑन द लाइन एंड आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन. एंड तब तक के लिए गाइज, आप ये वाला गाना एंजॉय करिए.
2: प्लीज स्टे ऑन द लाइन. पापा

गाइज, आई केम अक्रॉस समथिंग रियली वाइल्ड कुछ दिनों पहले. पता है क्या चीज़ थी? इट वॉज दिस वीडियो एंड दिस सेड सॉन्ग बाय अरिजीत सिंह, विच वॉज एक्चुअली नॉट बाय अरिजीत सिंह, बिकॉज इट रिलीज लाइक वन डे अगो एंड देन इट वॉज इट सेड दैट इट्स अरिजीत सिंह ओरिजिनल सॉन्ग, बट देन आई चेक द स्पेलिंग ऑफ दैट अरिजीत वॉज डिफरेंट. It was not ARIJIT. It was a different Arijit. और मैंने थोड़ा उसमें ना डिस्क्रिप्शन पढ़ा यूट्यूब पे करते करते, एंड देन आई रियलाइज दैट द सॉन्ग इज AI जेनरेटेड. समवन, देर इज अ लॉट ऑफ दिस स्टफ हैपनिंग बाय द वे गाइज, जस्ट इन केस यू डोंट नो. म्यूजिक इंडस्ट्री एंड AI हैज चेंज द गेम सो मच दैट देर आर पीपल, आई डोंट नो हु, बट AI, देर आर समबडी हु इज गिविंग AI द कमांड, राइट? अदरवाइज वो अपने आप थोड़ी ना बनाएगा. सो देर आर कंपनीज दैट आर प्रोड्यूसिंग सॉन्ग्स थ्रू AI, एंड थ्रू AI यू कैन प्रोड्यूस अ फुल सॉन्ग, पूरी इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह सबके साथ, एंड देन दे आर रिलीजिंग इट एज ओरिजिनल सॉन्ग्स विद द नेम सिमिलर टू अ रियली एस्टैब्लिश आर्टिस्ट, बट दे आर AI जेनरेटेड, एंड समबडी इज रीपिंग ऑफ द प्रॉफिट्स दैट शुड ओरिजिनली बी गोइंग टू दैट आर्टिस्ट. इंस्टेड AI पे गाने बना रहे हैं एंड उसको मिलियंस एंड मिलियन व्यूज मिल रही हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, एंड यू नो रिकॉर्ड कंपनीज रिकॉर्ड लेबल्स आर बेसिकली मेकिंग म्यूजिक लाइक दैट बिकॉज दे आर लाइक, ओ या नाउ वी डोंट हैव टू पे द आर्टिस्ट एंड गेट इन टू ऑल दिस नेगोशिएशन ऑफ राइट्स एंड दिस एंड दैट. आई मीन इज इन दैट वाइल्ड? लाइक कोई मतलब आर्टिस्ट को वैसे ही काम नहीं मिलता, वैसे ही पैसे नहीं मिलते, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स वैसे ही पैसे नहीं देते देते हैं हमें, लेकिन उसमें भी अगर म्यूजिक लेबल्स जो हैं जितने आई मीन फ्यू सेंट्स वट एवर दे वी गेट पर स्ट्रीम, वो भी अगर AI ले लेता है एंड दैट गो स्ट्रेट इन टू द कंपनीज पॉकेट, हाउ इज दैट फेयर? इज नॉट फेयर ना कि आपको AI आर्टिस्ट भी रिप्लेस कर देगा? इज नॉट वाइल्ड? तो आप ये गाना सुनिए, दिस इज नॉट AI बाय द वे, दिस इज गजेंद्र वर्मा विद द सॉन्ग मेरा मन, एंड दिस सॉन्ग हैज 41 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब.

गाइज, आपको पता है ना कि संडे को क्या होने वाला है? संडे इज गोना बी द बिगेस्ट बॉलीवुड नाइट इन DFW. विशाल शेखर आर कमिंग टू डैलस. यस, दे आर अबाउट टू कम टू डैलस एंड इट्स गोना बी ए स्पेक्टैक्युलर शो. इट्स गोना बी मैसिव, जाइनॉर्मस. सो मेक श्योर यू बाय योर टिकट्स वेल इन एडवांस, बिकॉज क्या होता है ना कि कॉन्सर्ट के डेट के पहले तब मन करता है कि नहीं यार, काश ले लिया होता टिकट. कोई बात नहीं, लास्ट मिनट बुक करते हैं, फिर आपको अपनी चॉइस की सीट नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह, बहुत पीछे जाके बैठना पड़ेगा. इसीलिए डोंट वेट टिल द लास्ट मिनट, गो बाय योर टिकट्स. दे आर परफॉर्मिंग ऑन संडे July 12th at the Curtis Culwell Center in Garland. Tickets are on sale now at kashpatelproductions.com. Or you can also use, because you know what? We love you guys, and you guys are such amazing listeners. So we love you guys. That's why we're giving you a discount code. Use the code FUNASIA to get a 30% discount. Or agar aapko abhi bhi nahi pata who Vishal Shekhar is, I was telling. So as you all know, guys, I am a full-time musician. I also teach besides, being an RJ, which I really like doing. I'm doing this because this is just fun at this point. But my main thing is I am a instructor of music. So I teach and I play a bunch of instruments. Uske saath I also perform. I do a lot of performances. I have my Bollywood band called the Dallas Bollywood Project. And I also do jazz performances, which is actually my training. So agar आज आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड आई वॉज लाइक कि एंड शी इज इंडियन एंड आई वॉज लाइक यार ख्याति, यू शुड गो बाय द टिकट हाँ, क्योंकि विशाल शेखर आ कमिंग. शी इज लाइक हु इज विशाल शेखर? मैंने कहा यू डोंट नो विशाल शेखर? OMG. शी इज लाइक नहीं, टेल मी द सॉन्ग नेम, आई एम श्योर आई नो द सॉन्ग. वेल ओके, देन आई टोल्ड हर. शी इज लाइक ओ दैट्स विशाल शेखर. मैंने कहा हाँ, दैट इज विशाल शेखर. सो मेक श्योर यू गो चेक इट आउट. ओके, एंड इसीलिए मैं आपको विशाल शेखर का एक गाना बजाती हूँ अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ में.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
4: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: Main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
8: वेट, इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
9: मैं।
10: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
11: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
10: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
12: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
13: You're earning well, but

0: with different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: You're earning well, but are you paying more taxes than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG FinTax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG FinTax. Plan smart, save more.
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
3: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
4: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
3: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
5: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया? कभी पॉलिसी समझ भी आया?
7: नहीं आया।
6: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है। इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनाडा इंक 972-863-7772। That's 972-863-7772.
3: Visit www.senadainc.com today.
8: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
9: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
10: And we are back. Guys, it is 8:30 on the clock. और जैसे मैंने बोला था, वी आर गोइंग टू हैव अनदर गिव अवे, लेकिन वो गिव अवे के पहले एक छोटा सा गाना, एंड देन व्हेन यू कम बैक आवर सेकंड गिव अवे इज फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर, सो स्टे ट्यून्ड।

0: can you hear me? You're on air.
1: Yeah, hello.
0: Hi. पहले तो अपना नाम बताइए and then tell me the correct answer.
1: I am Prashant.
0: Okay, Prashant ji, well, do you have the correct answer?
1: Yeah, 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है.
0: नहीं, पार्टी तो अभी भी बाकी है. यहाँ पे तो 9 बज गए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन पर वो गाना नहीं है. आई होप आप पार्टी जरूर करेंगे मेरी तरफ से.
1: ओके,
0: थैंक यू फॉर कॉलिंग.
1: थैंक यू.
0: हाय, थैंक यू फॉर कॉलिंग, यू आर ऑन एयर. आप
1: हाय.
0: हाय, पहले तो अपना नाम बताइए एंड देन टेल मी द आंसर.
1: माय नेम इज शुभम एंड द आंसर इज मिल गया
0: हमको
1: हमको
0: साथी
1: साथी.
0: मिल गया. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कंग्रेचुलेशन शुभम, यू हैव वन ए गिव अवे फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर. आप जीत चुके हैं एक ड्राई चिली चिकन, चिली बेबी कॉर्न या फिर डैलस बेस्ट बटर चिकन. इन तीनों में से कोई एक. तो गाइज, शुभम लाइन पे बने रहिए. आई एम गोना प्ले अ क्विक सॉन्ग एंड देन आई एम गोना टेक योर इन्फॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड. ओके, हेलो शुभम, कैन यू हियर मी?
1: Hi, yeah, I can hear you.
0: Yeah, so I said stay on the line. I'm going to play a song and then take your information, okay?
1: Sure. Yeah.
0: Okay, guys, aap ye gana enjoy kariye tab tak.

0: गाइस, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, इस पूरे हफ्ते एक नहीं दो नहीं पूरे तीन तीन गिव अवे होने वाले हैं। तो एक और गिव अवे हम खेलेंगे यहाँ पे एज यू बीन लिसनिंग। तो पहला गिव अवे जो था हमारा था वो फ्रॉम फन पिज्जा किचन। द सेकंड गिव अवे वाज फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर। कंग्रेचुलेशंस शुभम फॉर विनिंग ए ड्राई चिली चिकन, चिली बेबी कॉर्न या फिर डैलस बेस्ट बटर चिकन एट रेड हॉट चिली पेपर्स। रिमेंबर दैट वाज ओनली वैलिड इन रिचर्डसन मिकिनी और एलन। तो गाइज लेट्स कंग्रेचुलेट शुभम फॉर दैट। तो हमारा लास्ट गिव अवे गाइज इज फ्रॉम इंडिया बाजार। आपको पता है इंडिया बाजार क्या है? इट्स द मोस्ट अमेजिंग ग्रोसरी स्टोर। जब मैं फर्स्ट यूएस आई थी, मुझे और किसी ग्रोसरी स्टोर के बारे में नहीं पता था बिसाइड्स द रेगुलर अमेरिकन वंस। इंडिया बाजार आई न्यू क्योंकि मैं डेंटन से ऑल द वे लुइसविल जाती थी जस्ट बाय ग्रोसरीज और माई इंडियन मसाला फ्रॉम देयर। तो हियर इज योर चांस टू विन ए स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ। दे हैव ओपन्ड अ न्यू लोकेशन इन फोर्ट वर्थ। दिस इज फॉर ऑल माई ऑडियंसेज इन फोर्ट वर्थ, केलहर्स्ट, हैसलेट, साउथ लेक। इफ यू आर इन दैट एरिया, दिस इज वेयर यू शुड बी गोइंग। सम अदर लोकेशन अराउंड दैट एरिया आर रोवनोक एंड वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी जगह है उसके आसपास। तो अगर आप उस एरिया में हैं देन डेफिनेटली स्टॉप बाय एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑथेंटिक इंडियन ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, स्पाइसेस, स्नैक्स एंड ऑल योर देसी एसेंशियल। दे आर लोकेटेड एट 5152 क्वाड्रेंट वे इन फोर्ट वर्थ। तो आप क्या जीत सकते हैं? यू कैन विन ए ग्रोसरी हैम्पर यू गाइज। पूरे पता नहीं एक हफ्ते का या एक महीने की ग्रोसरीज का हैम्पर है, लेकिन आप जीत जरूर सकते हैं। तो ये वाला गेम सिंपल है। दिस इज नॉट अ बॉलीवुड कॉपी, दिस इज ए कंप्लीट द बॉलीवुड डायलॉग एंड देन यू कैन विन द गिफ्ट हैम्पर। सो यू नो माई नंबर 9722355555। तो खेलें। तो मैं आधा डायलॉग बोलूंगी, आपको कॉल करके आधा कंप्लीट करना पड़ेगा। दिस इज सुपर सुपर इजी, बट यू हैव टू बी एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एक वर्ड इधर उधर हुआ तो नहीं मिलेगा हैम्पर, ठीक है? सो लेट्स गो। तो दिस डायलॉग इज फ्रॉम वन ऑफ दी ओल्ड शाहरुख खान मूवीज, तो आपको समझ में आ गया होगा। इट्स फ्रॉम बाजीगर एंड लाइन है, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है। कंप्लीट इट एंड ब्लैंक। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, ब्लैंक। एंड वी हैव आवर फर्स्ट कॉलर। हाय, कैन यू हियर मी?
1: हेलो।
0: हेलो, हाय, कैन यू हियर मी?
1: आई कैन हियर यू।
0: ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी योर नेम एंड देन कंप्लीट द डायलॉग।
1: माय नेम इज पीयूष।
0: पीयूष, ओके पीयूष जी, गो फॉर इट।
1: सो
0: मैं
1: कभी-कभी
0: आधा
1: जीतने
0: बोलती
1: के लिए
0: हूँ।
1: हारना पड़ता। हाँ बोलिए।
0: मैं कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है।
1: और हार कर ही जीतने वाले को कहते हैं बाजीगर।
0: ऑलमोस्ट आपने वर्ड्स इधर उधर कर दिए
1: हार
0: थे।
1: हार कर जीतने वाले, क्योंकि हार कर जीतने वाले को कहते हैं बाजीगर कहते हैं, सॉरी, हार
0: यस
1: कर
0: दैट
1: जीतने
0: इज
1: वाले को बाजीगर
0: करेक्ट।
1: कहते हैं।
0: आपने करेक्ट कर लिया, विच इज वेरी वेरी गुड। इधर उधर एक दो वर्ड्स इधर उधर हो गया, बट थोड़ा ड्रामा के साथ बोलते हैं, ठीक है? यू हैव वॉन द गिव अवे, कंग्रेचुलेशंस पीयूष। लेकिन एक बार हम लोग इसको थोड़ा ड्रामेटिक रीडिंग करते हैं। तो गाइज द सॉन्ग दोबारा बोले साथ में, रेडी? 1 2 3 गो। कभी कभी जीतने के
1: कभी
0: लिए
1: जीतने के
0: कुछ हारना
1: लिए
0: पड़ता
1: हारना
0: है,
1: पड़ता है,
0: और हार कर
1: क्योंकि
0: जीतने वाले
1: जीतने
0: को
1: वाले को
0: बाजीगर कहते हैं।
1: बाजीगर
0: वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस पीयूष। आप लाइन पे बने रहिए, मैं गाना लगाती हूँ एंड देन आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है गाइज?
1: कहते हैं।
0: एंजॉय दिस।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
3: हाँ।
2: घर रिलोकेट करनी है?
3: हाँ।
2: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
3: हाँ भाई हाँ।
2: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
4: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
9: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
11: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
9: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपर हिट।
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
13: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
12: सच में सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
14: हाय, दिस इज शर्वरी, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।
15: हाय, दिस इज इपी द हिप्पी एंड यू गाइस आर लिसनिंग टू इन केस यू मिस्ड दैट, एंड यू गाइस आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम एंड दिस इज माय शो An evening in Dallas. भाई लास्ट इस हफ्ते का आखिरी घंटा है मेरे साथ, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी फिर अगले मंडे को, ठीक है? तो इस लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ दिस लास्ट का एक घंटा। बाय द वे, थैंक यू गाइज सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड कॉलिंग मी एंड टेलिंग मी हाउ मच यूर एंजॉइंग द शो। आई ऑल्सो एब्सोल्यूटली लव टॉकिंग टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू। कई लोगों ने मुझे तो कितने सारे नाम भी दे दिए हैं, कभी किसी ने मुझे मिनी बोला तो मैंने बोला बट यू नो वॉट, मेरा नाम मिनी नहीं, इपी है, लेकिन आई विल टेक इट। आप प्यार से मुझे जो भी बुलाएंगे आई विल टेक इट। भाई प्यार से वो प्यार की रिफ्लेक्शन होती है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वॉट योर नेम इज, इट्स लाइक अ इट्स द होल आइडिया इज कि प्यार से बोलना चाहिए जो भी बोलना चाहिए, है ना? तो उसके पहले मुझे एक कॉल भी आया, जैसे मैंने आई वाज टेलिंग यू गाइस आई एम ए प्रोफेशनल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। मैंने अपनी पूरी जिंदगी, लास्ट 30 इयर्स आई हैव स्पेंड परफॉर्मिंग, बीइंग ऑन स्टेज वगैरह वगैरह, एंड दैट हैज ब्रॉट मी हियर ऑन द रेडियो एज वेल। तो हियर इन डैलस आई हैव माय ओन बॉलीवुड बैंड कॉल्ड द डैलस बॉलीवुड प्रोजेक्ट। तो मुझे थोड़ी देर पहले कॉल आई, उन्होंने बोला आपने 2023 में मेरे साथ परफॉर्म किया था क्या? मैंने कहा नहीं, 2023 में मेरा तो बैंड था लेकिन मैंने तो ये वाला कॉन्सर्ट तो नहीं परफॉर्म किया. तो भाई मुझे ये भी पता चला कि हम मेरे बैंड का नाम कोई काफ़ी टाइम से चुरा के हमारे गिग्स भी चुरा रहा है यार. भाई वैसे ही हमारे म्यूजिशियंस को पैसे नहीं मिलते भाई. डैलस बॉलीवुड प्रोजेक्ट जो ओरिजिनल है उन्हीं के पास रहने दो. डोंट स्टील द नेम, अपना अलग नाम बनाओ यार, कुछ और भी DFW बॉलीवुड बना लो. लेकिन डैलस बॉलीवुड तो एक ओरिजिनली है. यू कैन फाइंड माई बैंड एंड माई इन्फॉर्मेशन एवरीवेयर ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड वी हैव अ वेबसाइट कॉल्ड DallasBollywood.com इन केस यू वॉन्ट टू बुक माई बैंड और सी सम वीडियोज और सी आर यूट्यूब वीडियोज. देन देर इज ओनली वन. प्लीज डोंट गो बुकिंग रैंडम पीपल कॉल्ड डैलस बॉलीवुड परफॉर्मर्स और एनी अदर प्रोजेक्ट बिकॉज दिस इज द ओरिजिनल वन दैट बिलोंग्स टू RJ Hippy the Hippy एंड वन एंड ओनली. ठीक है गाइज. तो जाने से पहले आई वॉज प्लेइंग द सॉन्ग. आई विल कंटिन्यू टू फिनिश द सॉन्ग क्योंकि ये गाना विशाल ने गाया है. इन केस यू आर वंडरिंग कि ये गाना आवाज़ किसकी है, भाई ये गाना विशाल की आवाज़ में है, फ्रॉम विशाल शेखर, हुआ परफॉर्मिंग ऑन संडे एट द कर्टिस कलवेल सेंटर. आप अपनी टिकट्स ले लीजिए. ओके एंड देन वील कम बैक एंड टॉक सम मोर.

0: is coming your way.
1: Vishal and Shekhar.
2: Here we go.
0: That's right. Vishal and Shekhar Live. Get ready for an electrifying evening filled with songs you've danced to, celebrated with, and fallen in love listening to. Sunday, July 12th at the Curtis Culville Center in Garland. Tickets on sale now. CashPatelProductions.com. The Super Hit Tour with Vishal and Shekhar.
3: Use code FUNASIA and get 30% discount.
4: Swag se karenge sabka swagat.
5: स्वैग से तो सबका स्वागत करेंगे ही, लेकिन स्वागत करते करते कभी अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है एंड यू नो द अदर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, देन यू नीड टू बी स्ट्रेस फ्री एंड यू नीड टू फाइंड समवन हु विल हैंडल दिस स्टफ फॉर यू. गाइज, डोंट टेक एवरीथिंग ऑन योर प्लेट. आई नो इट फील्स रियली कूल टू बी इंडिपेंडेंट एंड से आई एम अ पावर बैरी एंड आई कैन टोटली टेक केयर ऑफ दिस माई सेल्फ, लेकिन कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है एंड वन थिंग आफ्टर द अदर इट स्टार्ट्स पाइलिंग अप. वेल, इफ यू एवर गेट स्टक इन अ सिचुएशन लाइक दैट, यू नीड टू कॉल अप समवन नोन एज ओमर ख्वाजा. ओके, अटर्नी ओमर ख्वाजा, ही विल फाइट योर केस एंड ही विल गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज ना कभी अपनी जेबें नहीं खाली करती, वो आपको आपसे पैसे लेती है प्रीमियम पे प्रीमियम, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा जब तक आपके पास एक अच्छा लॉयर नहीं है आपको डिफेंड करने के लिए, आपकी तरफ से फाइट करने के लिए. क्योंकि ज़िंदगी में बिना फाइट के ना कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसे थोड़ा सा मेहनत हमें डालनी पड़ती है एंड दिस टेक्स स्किल. सो कॉल समवन हु इज़ एक्सपीरियंस्ड एंड इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज. ही विल मेक श्योर, ओमर ख्वाजा दैट इज, विल मेक श्योर दैट यू आर कॉम्पनसेटेड एंड यू डोंट पे अंटिल यू विन. फॉर अ फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-300-5046. फॉर ऑल यू नो, मे बी देर इज लाइक आई डोंट नो $10,000 सिटिंग राइट देर इन द लास्ट कार एक्सीडेंट दैट यू हैड और सम काइंड ऑफ एन इंसिडेंट एंड यू डोंट इवन नो अबाउट इट. और विजिट अटर्नी ओमर डॉट कॉम फॉर सम मोर आइडियाज रिगार्डिंग दिस. तब तक के लिए आप इंजॉय करिए ये सॉन्ग. दिस इज एपी द हिपी एंड यू गाइज आर लिसनिंग टू FUNASIA Radio 104.9 FM एंड दिस इज माई शो. An evening in Dallas. Evenings and night ho chuki. I'm about to clock out in just about 20 minutes. Tab tak ke liye, we'll still talk some more.

हम चले। गाइज, इट इज 9:49 ऑन द क्लॉक। इट इज टाइम फॉर मी टू से बाय बाय, टाटा बाय बाय टू यू। भाई एक हफ्ते बाद फिर मिलेंगे, एक हफ्ते बाद तो नहीं, 3-4 दिन ही है वैसे तो। उसके बाद हम फिर से मिलेंगे यहीं पे, इसी जगह, इसी टाइम पे, फ्रॉम 7 टू 10 PM, मंडे टू थर्सडे, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM। एंड दिस इज योर होस्ट एपी द हिपी, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टनाइट, लाइक एवरी नाइट, मंडे टू थर्सडे। आई विल सी यू ऑन मंडे नाउ। आई होप यू एंजॉयड दिस सेगमेंट। एक्चुअली मैं आज तो आपको बड़ा एक अच्छा सा स्टोरी बोलने वाली थी, लेकिन इतने सारे एड्स वगैरह बोलते बोलते मेरी तो स्टोरी, मतलब टाइम ही नहीं मिला सच बोलने का। लेकिन बट द स्टोरी, वी विल कंटिन्यू दैट ऑन मंडे, एंड दैट स्टोरी इज़ अबाउट वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल प्री कलोनियल लव स्टोरीज बिटवीन दिस रोमेनियन जेंटलमैन एंड दिस बंगाली गर्ल। जब जिस टाइम पे यू नो इट वॉज नॉट रियली अलाउड टू डेट आउटसाइड योर रेस एंड एवरी थिंग, एंड दे हैड लाइक अ स्टीमी रोमांस। शी वॉज ओनली 14, ही वॉज अ मच ओल्डर गाय। एंड फन फैक्ट, बोथ ऑफ देम रोट अ बुक अबाउट दैट रोमांस, एंड यू नो इट वॉज क्वाइट द टॉक ऑफ द टाउन, एंड देर इज अ लॉट ऑफ इंटीमेट डिटेल्स इन दैट। आई विल नॉट टेल यू द इंटीमेट डिटेल्स, बट आई डू वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दैट स्टोरी। सो स्टे ट्यून्ड, मंडे को वो स्टोरी करेंगे हम, आज नहीं। तो मेक श्योर यू ज्वाइन इन ऑन मंडे, बिकॉज इट्स गोना बी अ फन एपिसोड। फॉर नाउ दिस इज इपी द हिपी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। यू ऑल आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, एंड हैव अ ग्रेट रेस्ट ऑफ योर नाइट एंड द वीकेंड।

0: कितने आदमी थे?
1: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
5: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
6: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
7: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिजल्ट्स में वेरी।
8: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स, डैलस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू एंड ट्रस्ट अस, दिस इज नॉट योर रेगुलर स्लाइस। Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: Ajji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
10: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
9: सच में सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: बोरिंग दिनचर्या में
1: घोलिए नए रंग फन एशिया रेडियो के संग।

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: दिला दे घर बना दे घर, दिला दे घर।
3: ओह माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनी।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनीशा रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

सुबह और शाम हर पहर आपके नाम फनेजा रेडियो 104.9 FM।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है। So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस next गाने को।

डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज़ लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी इज योर रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी, किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है। बोली में थोड़ा रेयान भी टच है। जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में, वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। The Flavor Lounge, हर बाई सुपर हिट।
4: You're earning well, but are you paying more taxes than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG FinTax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited. So reserve your spot today. AG FinTax. Plan smart, save more.

0: सर, लगता है फारूक नहीं बोलेगा।
1: उसका बाप ही बोलेगा।
2: बेटा, वार्निंग नहीं दूंगा।
3: 25 किलो HMX हमारे शहर में आ चुका है, ना जाने अब तक उसके कितने टुकड़े पूरे शहर में बच चुके होंगे।
4: होली स्पिरिट हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट विक्टिम लाया गया है। He's a human bomb.
5: एक बेटा बच गया सायरन,

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: bringing the community together. Fun Issue Radio, 104.9 FM.
1: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल थी।

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyways, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था।

0: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
2: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है
1: ऐसी जगह।
2: अरे झुमका भी मैं भूल गई जाने जा तेरे लिए।
3: थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे। चलिए ना।

0: Spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.
1: Ya tabar tanduri night, tanduri night. अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. This summer enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: playing the music you want all day, every day, only on Funasia Radio.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
8: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
9: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
10: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डालस चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 ईयर्स.
11: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
12: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Funasia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
17: You're earning well, but are you paying more taxes than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG FinTax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG FinTax. Fintax. Plan smart. Save more.
18: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At ShopCompareInsure.com, we're not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours. Build your own income. Make a real impact.
17: Visit ShopCompareInsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's ShopCompareInsure.com. Your 360 insurance solution.
19: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
20: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
21: Let's round off this week for you today. It's Friday, the 10th of July. Sabse pehle, tareef super wale ki, jisne duniya banai. Chand sitare banai, zameen aasman banai. Insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. Usi upar wale ki tareef hai, jisne mujhko, aapko, aur ye saari kainat ko, insaniyat ko aage badhane ke liye banaya hai. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, देन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम दिस मॉर्निंग. वेलकम टू द शो.

0: That song in the voice of Kavita Krishnamurthy was requested by one of our listeners, and I do hope you enjoyed it. The number here in the studios, and I'll take your calls, 972-235-5555. As we head for another triple-digit day today, looks like it. We were 101 yesterday, and probably 101 or at least 100 today also, and today is going to be day 4 of triple digits. Not sure about tomorrow yet. We'll be close to 100, if not 100. And Sunday and Monday, scattered storms and cooler. And cooler these days means 95 degrees. Enjoy it.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओह हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
4: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
4: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
4: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
6: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
7: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
8: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
7: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
9: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद में कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
10: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
9: कहाँ?
11: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
3: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब।
12: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
13: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
12: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
13: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
14: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
15: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
16: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
17: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
16: Kya matlab?
17: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
16: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
17: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
16: Ab to karna hi padega, madam.
18: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
19: Aji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
20: India mein?
19: तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
20: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
19: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
20: सच में सब संभालेंगे?
19: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
21: Queen Victoria की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? आप तो वैसे ही लगेंगी। मलिका

0: or risk fines. I have plenty more news for you, and we'll get it to you now in the next hour of the program. Stay with us right here.
1: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: Heere moti maina chahu.
4: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग.
0: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
5: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
0: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग. अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स. जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
6: खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा.
7: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर.
8: पैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विद फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी. फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस.
7: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन.
9: मामू, देखो क्या हो गया.
10: ओ, क्या हो गया?
9: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया. और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
10: ओए, जर्मन का कमाल है.
9: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
10: ओ, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार.
11: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
12: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
13: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
14: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
15: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन रिजल्ट्स में वेरी.
16: समझ नहीं आ रही, टिकट लूं तो कहां से लूं?
17: इट्स लॉसन.
16: किससे बात करूं, सारी जानकारी कौन देगा?
17: इट्स लॉसन.
16: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
18: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे, 2146312458. द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल.
19: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

0: It is 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
9: Calculating route, rerouting.
8: Are, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
9: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
8: Kyun?
9: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials, authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
8: Achha, to seedha wahi le chalo.
10: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
9: Your new destination has arrived.
11: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
12: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
11: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
12: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
13: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support, aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
14: चीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
15: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
14: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
15: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
14: और एंटरटेनमेंट,
15: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है.
14: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
15: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
16: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
17: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
18: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
17: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
19: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
6: इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 469-298-3870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
16: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
11: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
12: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
11: कैसे?
12: पेज 3 ईटरी?
11: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
12: ड्यूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
11: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
0: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
7: जिंदगी एक रंगमंच है
4: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
13: कॉल 972-897-1530, firstunitedtexastitle.com.
8: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
10: Excuse me. It's called being loyal.
8: It's called being predictable.
10: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
8: And what's so special at Neon Cactus?
20: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
21: Not bad.
20: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
21: Okay, this I didn't expect from you.
20: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
22: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At ShopCompareInsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL, and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
23: Visit ShopCompareInsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's ShopCompareInsure.com, your 360 insurance solution.
24: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
25: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
24: कैसे?
25: पेज 3 ईटरी?
24: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
25: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
11: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
0: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
26: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.
27: Thank you very much for joining us in this hour of the program. If it is just now that you're joining us, do receive my very warm welcome to the show. And we do hope that you are going to get all the information that you need to take on the day right here in this hour of the program. Also, we hope that you will get all the entertainment you're looking for. And if it's there's anything in particular, I'll be happy to play your track for you. Number here in the studio is 972-235-5555. As we round off this work week for you, it is Friday, the 10th of July, and looks like another triple-digit day ahead of us. 101 yesterday, probably the same tomorrow, and it'll be the fourth day today that we'll touch the triple digits if that happens. Not sure about tomorrow yet. And then Sunday and Monday, we have scattered storms in our area and temperatures cooler, and that is 95 degrees.

0: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
1: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
0: क्या मतलब?
1: Oura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
0: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
1: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
0: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
2: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
3: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
4: It's Lawson.
3: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
4: It's Lawson.
3: Daddy, what is the law?
5: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
6: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy. You need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
7: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
8: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है.
9: प्लान या होप?
8: मतलब है
9: प्लान, मतलब स्ट्रेटजी. होप मतलब देखते हैं क्या होता है.
8: ओके, तो मेरा वाला होप है.
9: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं.
8: क्यों?
9: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है.
10: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी. फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com.
11: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
12: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
13: Documents ya parcel bhejni hai?
14: हाँ.
13: घर रिलोकेट करनी है?
14: हाँ.
13: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
14: हाँ भाई हाँ.
13: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
15: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
16: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉप टावर कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाए. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement. Sub ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game. Say what?

0: We do have the world news coming up for you at the 9:30 segment, and after that we will have some stories from the annals of history. Stay with us.
1: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
2: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust, aur ab wahi trusted care urgent care services ke saath naye Kaizerway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa, sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care, open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes, and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
4: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
5: आने वाले खाने में डोसा।
2: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
6: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali और साथ में शहर की best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
2: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
7: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
8: Is shahar ko hua kya? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
9: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
10: एस्ट्रोजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिजल्ट्स में वेरी।
11: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
12: कॉल द एसबीए लोन एक्सपर्ट्स।
11: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
12: कॉल द एसबीए लोन एक्सपर्ट्स।
11: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
12: कॉल द एसबीए लोन एक्सपर्ट्स।
11: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द एसबीए लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
13: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
2: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
13: कहाँ?
14: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
2: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस One vibe.
15: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: See your usual place again. I'm tired of the same food.
1: Excuse me. It's called being loyal.
0: It's called being predictable.
1: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
0: And what's so special at Neon Cactus?
1: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
0: Not bad.
1: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
0: Okay, this I didn't expect from you.
1: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
2: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
3: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
4: Calculating route, rerouting.
3: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
4: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
3: क्यों?
4: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
3: अच्छा. तो सीधा वही ले चलो
5: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
4: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
1: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
0: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
1: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
0: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाय सुपर हिट
8: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
1: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
8: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
1: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
8: सच में सब संभालेंगे
1: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
7: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770 वेनेसा इवेंट्स योर सेलिब्रेशन पार्टनर
9: Listeners, my name is Amira Jamani and I am from Sanada Inc. Today I'm here to give you an update on auto insurance premiums. There are so many factors that impact your insurance premiums due to high cost of the labor, material and because of the higher inflation, higher claims, your auto insurance premium is getting higher. Me and my team, we are available to assist you because we have access to more than 450 carriers and we are your one-stop shop for all the insurance needs. If you are looking for auto, home, life, health, Medicare or commercial insurance, do contact me or my team at 972-863-7772, 972-863-7772. Thank you.
10: If I say the word Godiva, it rings a bell and you're probably thinking of the famous Belgian chocolate brand. But almost 1,000 years before the confection existed, there was a real woman by the name of Lady Godiva, and it was on today's date in the year 1040 that her statue riding a horse was put up. Some stories from the annals of history. Lady Jane Grey, the 15-year-old great-granddaughter of Henry VII, became Queen of England, but her reign lasted only 9 days and she was executed by Mary Tudor the following year. That happened on today's date in 1553. And in 1609, the Catholic League was formed by the Maximilian Duke of Bavaria and the Catholic powers in Germany. The Catholic League.

0: चलिए उन मोहब्बतों को जिंदा रखते हुए आप मुझे दीजिए इजाजत आज प्रोग्राम समाप्त करने की. Me Too's coming on right after me. You'll continue listening to the Fun Asia Network. It is 10 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
5: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye, to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury aur excitement. सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम.
6: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
5: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
6: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
5: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
7: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
8: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
9: जिंदगी एक रंगमंच है
10: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
11: कॉल 972-897-1530. firstunitedtexastitle.com.
12: ये तारा वो तारा हर तारा.
13: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
14: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
15: इट्स लॉसन.
14: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
15: इट्स लॉसन.
14: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
16: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे. 214-631-2458. द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन.

0: कर्नाटक के सुपर हिट्स इज कमिंग योर वे
1: विशाल एंड शेखर
2: हियर वी गो
0: दैट्स राइट विशाल एंड शेखर लाइव गेट रेडी फॉर एन इलेक्ट्रिफाइंग इवनिंग फिल्ड विद सॉन्ग्स यू डांस टू सेलिब्रेटेड विद एंड फॉलन इन लव लिसनिंग टू संडे जुलाई 12th एट द करिस कलवेल सेंटर इन गार्लैंड टिकट्स ऑन सेल नाउ cashpatelproductions.com द सुपर हिट टूर विद विशाल एंड शेखर
3: यूज कोड फन एशिया एंड गेट 30% डिस्काउंट
4: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत
5: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।

Friday is definitely my favorite word, ladies and gentlemen. Hello, namaskar, and thank you very much for tuning into Fun Asia Radio. And Fun Asia Radio is my second favorite word that you will hear on Gupshup Gali with me too. और यही मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि भाई कैसा चल रहा है आज का दिन, माहौल कैसा है. एंड ये जो सवाल है आपसे हर आज आके पूछेगा, क्योंकि फ्राइडे का यार मूड ही कुछ ऐसा होता है कि हम रह नहीं सकते वो क्लीशेड सवाल आपसे पूछे बिना. दिस इज गपशप गली विथ मी टू, 10th ऑफ जुलाई. लेडीज एंड जेंटलमैन, 8 मिनट बीत चुके हैं, 10:08 मिनट जो हुए हैं, जो यहाँ से जो सफ़र शुरू होता है, वी विल कंटिन्यू अंटिल 12:30. दिस इज वंस अगेन गपशप गली विथ मी टू. एंड यू मस्ट रिमेंबर लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टूडियो का नंबर 972-235-5555.

हम सब एक सफर पर ही तो हैं. लाइफ इज अ जर्नी ऑफ कॉन्स्टेंट डिस्कवरी, वुडंट यू से दैट. हर लम्हे कुछ ना कुछ एक नई चीज आपको मिली सकती है आज, थैंक्स टू दैट कनेक्शन दैट वी हैव विद द वर्ल्ड. और हम जिस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, वो हमारे फिंगर टिप्स पे है अभी. यस, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट डिस्कवरी. और जैसे दुनिया को एक्सप्लोर करने हम निकलते हैं ना, वैसे ही जिंदगी को एक्सप्लोर करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना कभी कभी ज़रूरी होता है. और ऐसे में ना, अगर आपने कुछ अपना जो लाइफ ट्रेजेक्टरी है टुवर्ड्स बिजनेस, इफ़ यू हैव मूव्ड इनटू एंड इफ़ यू आर न्यू इनटू इट, तो शायद यहाँ पे हम आपकी मदद कर सकते हैं. और अगर आप पुराने भी हैं, यू नो, इंडिविजुअल या स्मॉल बिजनेसेस की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो AG फिनटैक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US, वी सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू. दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज और आपकी जो अनटैप पोटेंशियल है ना, उसको बेस्ट प्लेस पे लेकर जाती है. और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि AG फिनटैक्स के साथ आप जरूर कनेक्ट करें, क्योंकि डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट दे हैव ऑफ स्ट्रेटेजिक टैक्स प्लानिंग एंड बुक कीपिंग एक्सपीरियंस टू इनेबल स्मॉल बिजनेस ओनर सक्सीड एंड बिल्ड वेल्थ बाय, यू नो, सॉर्ट ऑफ सेविंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स. दैट यू मस्ट गेट इन टच विद अनिल गांधी एंड हिज टीम एट AG फिनटैक्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, 4699429888 इनका नंबर है. और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ, आज 10 तारीख है, राइट? और इस सेमिनार, फ्री सेमिनार के बारे में हम आपको कुछ दिन से बताते आ रहे हैं. तो आज एक नाइस रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू, इफ यू आर ए बिजनेस ओनर अर्निंग मोर देन $200,000 एनुअली, देन दिस सेमिनार इज सर्टनली फॉर यू. AG फिनटैक्स का ये फ्री टैक्स प्लानिंग सेमिनार, जहाँ पे आप डिस्कवर कर सकते हैं लीगल स्ट्रैटेजीज दैट मे हेल्प रिड्यूस योर टैक्स बर्डन, वेरी स्मार्ट प्लानिंग दैट दे ब्रिंग फॉर ऑल ऑफ यू, tailor-made smart planning that every business needs, right? Unique strategies that you can use. July 10th, यानी कि आज 6 बजे से शुरू होगा Fun Pizza Kitchen Frisco में. और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ, you have to go to the website to register right away, क्योंकि seats limited है, one can imagine. agfintax.funasia.net पे जाके register ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप register करते हैं तो आपके लिए एक special surprise gift भी रहेगा वहाँ पर. So this is happening today, ladies and gentlemen. Mark it on your calendar. At 6 p.m. it starts at Fun Pizza Kitchen in Frisco.

0: पूछे तो
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है,
0: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
2: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
0: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
4: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव।
5: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
6: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
7: You're earning well, but are you paying more taxes than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG FinTax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG FinTax. Plan smart, save more.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
10: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
12: A warm welcome to all of you once again for ladies and gentlemen who are tuning in just now. Bhai, warm to hai. Dallas mein agar rehte ho to warm welcome main to har summer mein aapko kar sakti ho. Aur bilkul literally it is going to be that 100 degrees that we have been talking about. Lekin kal se thoda jo hamara temperature hai na thoda meherban hone wala hai Dallas mein. Kuch ek aad degrees jo kam honge usi ke bare mein batane wali ho right after this next track that I play. Well, jo plans ban rahe hai na lunch ke aap logon ke aur jo excitement है ना कि कहां जाना है, क्या करना है, उन सब में एक और नाम शामिल कर लीजिए, एक्चुअली दो और नाम शामिल कर लीजिए. एक तो है सफी जो लंच पे जाने वाले हैं, एंड आई एम श्योर सफी यू वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि मैं भी जाने वाली हूँ लंच पे और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ टू आवर वंडरफुल प्लान्स अहेड ऑफ द वीकेंड. चीयर्स टू ऑल ऑफ अस जो कि कुछ प्लान्स बना के बैठे हुए हैं, और जो नहीं जिन्होंने बनाया ना मेरे लिए उनकी भी एक कैटेगरी है.

हाँ जी, चलते चलिए हमारे साथ. दिस इज गपशप गली विथ मीठू. घड़ी में बजे हैं 10:27 राइट नाउ बाय द स्टूडियो क्लॉक दैट इट इज. और थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता रही थी ना कि देर आर कैटेगरीज ऑफ पीपल जो कि फ्राइडे का कुछ अपना एक सपना लेके चलते हैं, वीकेंड कैसे बीतेगा उसका सपना लेके चलते हैं. आज मुझे ना वो फरहान अख्तर का जिंदा जिंदा हो तो क्या है, वो कुछ पोइट्री थी ना, वो अचानक से याद आ रहा था. एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक ऑफ कैटेगराइजिंग पीपल. यू नो कि अलग अलग किस्म के अलग अलग लोग होते हैं जो अलग अलग प्लानिंग करके बैठे होते हैं वीकेंड का. और कुछ वो होते हैं जैसे कि मैं हूँ, मेरे अभी बहुत सारे प्लान्स बने हुए हैं वीकेंड के एंड आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट. आई नो बाई द एंड ऑफ द वीकेंड आई एम गोइंग टू बी सुपर सुपर टायर्ड. आई एम नॉट टू हैप्पी अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम द काइंड ऑफ यू नो द गैदरिंग्स दैट आई विल बी पार्ट ऑफ, आई नो आई एम गोइंग टू हैव अ फैंटास्टिक टाइम. सो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट. तो मैं वो हूँ जिन्होंने मैंने प्लान कर लिया है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, एक वो बिरादरी होती है प्राणियों की कि जहां पर ना वो प्लानिंग चलती है कि यार इस बार ना 12 घंटे से कम नहीं सोएंगे. मतलब सुबह बिल्कुल वो 11 बजे 12 बजे उठेंगे और बस खाना खाएंगे, कुछ रिलैक्स करेंगे, कुछ देखेंगे ओटीटी पे और फिर वापस से सोफा या बिस्तर पकड़ लेंगे. ये एक अलग बिरादरी होती है. एक और किस्म की बिरादरी होती है जो कि बहुत सारे ना डू इट योरसेल्फ वाले ना DIY जॉब्स लेके एजेंडाज बना के बैठे हुए हैं. सो यस, दैट्स द थर्ड कैटेगरी. जिस भी बिरादरी को आप बिलोंग करते हैं, आई एम श्योर यू हैव मेड योर प्लान्स एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड. Whether you are excited about it is a different thing. Yet, planning तो हमारी हमेशा चलती रहती है और एक दिन पहले नहीं बल्कि बहुत दिन पहले से कई प्लानिंग्स चलती हैं.

वेदर लेडीज एंड जेंटलमैन, जो मैं अभी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, ये वो मौसम है जब कुछ ज़्यादा कुछ बदलता नहीं है डे टू डे. वैसे संडे को कुछ बदलने वाला है और इसी की एक्साइटमेंट मेरी आवाज़ में आप सुन रहे हो. एंड इट इज़ लेडीज एंड जेंटलमैन अ वार्म स्टार्ट टू द फ्राइडे दैट वी हैव हैड. टेम्परेचर्स हमारे कुछ 70s या 80s में रहे सुबह सुबह और हम वो 100 डिग्री मार्क रीच करने वाले हैं, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है क्योंकि हीट इंडेक्स कम्स इन टू एक्शन एंड मेक्स इट फील लाइक 105 डिग्रीज फॉर ऑल ऑफ अस. And that is what exactly is to happen today. थोड़ा सा ब्रीजी होगा, थोड़ा नहीं अच्छा ही ब्रीजी होगा, which helps actually in my opinion, कि जब मैं शाम को वॉक करने जाती हूँ अपने डॉग के साथ तो वो हवा ना अच्छी लगती है एक्चुअली. कि एक तो गर्मी, उसमें आप झुलस रहे हो, उसमें आप स्वेट कर रहे हो, उसमें थोड़ी सी अगर आपको हवा मिल जाए ना तो बहुत राहत मिलता है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है उसमें. प्लस आई कैरी दिस स्प्रे विथ मी, वाटर स्प्रे विथ मी. मैं अपने डॉग को भी करती हूँ, मैं खुद भी स्प्रे करती हूँ अपने आप को. बहुत अच्छा लगता है, वो ना फुहार टाइप का लगता है बारिश के. ऐसे में कहाँ डाइग्रेस कर गई हूँ, वापस आती हूँ वेदर पे. स्लिम चांसेस ऑफ बारिश, वो आपको स्प्रे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. शावर्स के चांसेस हैं और वो हैं कल, लेकिन चांसेस ऑफ आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड स्टॉर्म्स इज मच बेटर ऑन संडे, लेट मी टेल यू दैट. वैसे तो कोई सिवियर स्टॉर्म्स एक्सपेक्टेड नहीं है अक्रॉस डैलस फोर्ट वर्थ मेट्रोप्लेक्स, बट दी स्टॉर्म्स मे कंटेन गस्टी विंड, सम हेल एंड हैवी डाउनपोर्स. और जहाँ पे बारिश होगी वहाँ पे फ्लडिंग के चांसेस भी हो सकते हैं इफ इट हावर्स अराउंड द सेम एरिया फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड. सो यस, दैट इज व्हाट आई विल से, कि संडे को थोड़ा सा आप माइंडफुल रहें जब आप निकलें, तो देख लें भाई एक बार वेदर चेक कर लें. द चेन ऑफ रेन कंटिन्यूज नेक्स्ट वीक ऑल्सो, दैट इज व्हाट यू ऑल नीड टू नो. और इसके अलावा टेम्परेचर्स हमारे डिप करने वाले हैं, इट्स गोइंग टू फॉल बिलो एवरेज इन द लोअर 90s दैट वी आर गोइंग टू सी. एंड दिस कूल डाउन विल बी प्रिटी शॉर्ट लिव, क्योंकि ये ट्रिपल डिजिट्स में हमारे फिर टेम्परेचर अगले वीकेंड तक वापस आने वाले हैं. सो यस, दैट्स द अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू राइट हियर ऑन फनीशा रेडियो 104.9 FM. गपशप गली विथ मी टू कंटिन्यूज बियॉन्ड द ब्रेक एज वेल. 12:30 बजे तक हूँ भाई. कीप लिसनिंग टू फनीशा रेडियो 104.9 FM.

0: moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: शक्ति, संस्कृति और समर्पण की एक यादगार शाम आपका इंतजार कर रही है। इस सैटरडे 11 जुलाई शाम 7 से 9 बजे अपने पूरे परिवार के साथ आइए कृष्णा हेरिटेज सेंटर शंखस्थापना महोत्सव में। एक भव्य 11 एकड़ कैंपस की शुरुआत का जश्न मनाइए, जहां बनेगा कृष्ण टेंपल, गौशाला, फ्री स्कूल, इवेंट्स हॉल और रेस्टोरेंट। शाम को और भी खास बनाएंगे, गौ पूजा, नरसिम्हा यज्ञ चैंटिंग, किड्स मेला, भजन क्लबिंग और सबके लिए फ्री डिनर फीस्ट। मायर्स पार्क ऑपोजिट कृष्णा हेरिटेज सेंटर, 7082 रोड।
2: मामू देखो क्या हो गया।
3: ओ क्या हो गया?
2: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
3: ओए जर्मन का कमाल है,
2: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
3: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
4: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
5: Everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11

0: party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
1: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, because miracles happen in Mirage.
2: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
3: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
4: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
5: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday,
4: all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
6: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो.
7: वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं गपशप गली विद मी टू, और मेरा और आपका सफर 12:30 बजे तक चलता रहेगा. और हर सेगमेंट की अपनी एक खासियत होती है, और इस सेगमेंट में हम ऑन दिस डे इन सिनेमा हिस्ट्री दैट वी ब्रिंग फॉर ऑल ऑफ यू, 10th of July को जो फिल्म्स रिलीज हुई हैं उनका एक कच्चा चिट्ठा हम लेकर आते हैं आपके लिए. सम दैट फ्लॉप्ड एट द बॉक्स ऑफिस, जो कुछ जो एवरेज चली और कुछ जो सुपरहिट रही. और अगर मैं इस फिल्म को अगर सुपरहिट कहूँ तो वो भी एक अंडरस्टेटमेंट होगा. दिस नेक्स्ट ट्रैक दैट आई एम गोइंग टू प्ले फॉर ऑल ऑफ यू विल क्लैरिफाई व्हाई आई सेड दैट. दिस इज गपशप गली विद मी टू. आज ही के दिन 2015 में रिलीज हुई थी बाहुबली द बिगिनिंग.

एंड दैट वॉज फ्रॉम बाहुबली द बिगिनिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन. और अगर आपको ये सीन याद है, दैट वाटरफॉल सीन याद है, वो आइकॉनिक सीन, राजमौली साहब जो हैं, जो फिल्म के डायरेक्टर, ये मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा फॉर दोज वेरी फ्यू पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ इट, वेल ही स्पेंट, द डायरेक्टर स्पेंट एन इनक्रेडिबल 109 डेज शूटिंग जस्ट दैट सिंगल सीक्वेंस, जस्ट FYI. और पता है ना, प्रभास जो इस फिल्म के लीड थे और जो कमाल का उनको इसके बाद जो पॉपुलैरिटी मिला था पैन इंडिया, ही एक्चुअली कमिटेड टू दिस प्रोजेक्ट 3 गुड ईयर्स ऑफ हिज लाइफ. इसी प्रोजेक्ट के लिए ना कोई दूसरी फिल्म उन्होंने साइन की, ना कोई ब्रांड एंडोर्समेंट, क्या प्योर डेडिकेशन के साथ इस फिल्म पे काम किया SS राजमौली साहब के साथ, जो इस फिल्म के साथ एक सवाल छोड़ के गए थे, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? जिसका जवाब हमें मिला बाहुबली 2 में. मैंने सोचा लगे हाथ यार, वाई नॉट, लेट्स सेलिब्रेट दिस पैन इंडिया फिल्म.

वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वो सेगमेंट है जहां पर हम आज के दिन जो रिलीज हुई है फिल्म्स उनके बारे में बात करते हैं इन अ वेरी ब्रीफ वे दैट वी टॉक अबाउट इट. तो यहां पर एक और फिल्म का नाम लेना चाहती हूं जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी, 10th of July 2005. संजय दत्त, अभिषेक बच्चन और सुनील शेट्टी की ये एक्शन थ्रिलर थी एंड इट डिड प्रिटी वेल एट द बॉक्स ऑफिस. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ऑन दैट, ओके? बिकॉज मैंने ये फिल्म नहीं देखी है तो मुझे नहीं पता. मैंने जो देखा है और एक्चुअली सुना है वो है द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, ब्रॉट टू यू बाय विशाल शेखर. लेडीज एंड जेंटलमैन, फिल्म का नाम है 10, और इस गाने का जो टाइटल है, इस फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग है, वही मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ. द वेरी पॉपुलर 10 बहाने कमिंग अप फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन, और कोई बहाने नहीं चलेंगे आपके अगर आप विशाल शेखर का कॉन्सर्ट अगर मिस करते हो ना. इट इज़ गोइंग टू बी ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर लाइफ. मैं सच कह रही हूँ, विशाल शेखर का ये कॉन्सर्ट कमाल का होने वाला है, विथ अमेजिंग यू नो प्लेथोरा ऑफ सॉन्ग्स दैट दे हैव इन ऑल काइंड ऑफ जॉनरा दैट यू कैन इमेजिन. ये वाकई में हमारे लिए एक ट्रीट है दैट दे आर कमिंग टू आवर टाउन ऑन संडे जुलाई 12th एट द कर्टिस कलविल सेंटर. दैट्स व्हेन वी आर गोइंग टू सी देम, फील देम म्यूजिक एंड एंजॉय करने वाले हैं एक शाम सबके साथ. cashpatelproductions.com पे जाके टिकट्स खरीद लीजिए यार, और 30% डिस्काउंट की अगर चाहत है, इफ यू विश दैट 30% डिस्काउंट, तो फन एशिया कोड जो है टाइप इन करना बिल्कुल नहीं भूलेगा. अच्छा, मैं यहाँ भूल नहीं सकती कि भाई 10 ये जो फिल्म थी ना, इसके साथ एक बड़ी एक हार्ट वार्मिंग ट्रिविया दैट इज अटैच टू इट. सी, ऑन स्क्रीन तो दे हैड एग्जैक्टली 10 days टू स्टॉप अ टेररिस्ट अटैक ऑन May 10th दैट वॉज टू हैपन, सो इसीलिए फिल्म का नाम शायद 10 रखा गया होगा. लेकिन ऑफ स्क्रीन इट वॉज ए वेरी डीपली इमोशनल ट्रिब्यूट, एंड दैट ट्रिब्यूट वॉज टू डायरेक्टर मुकुल एस आनंद. 1997 में डायरेक्टर मुकुल एस आनंद वॉज मेकिंग अ डिफरेंट फिल्म टाइटल्ड 10, जिसमें सलमान खान थे एंड आई थिंक रवीना टंडन एंड देयर वॉज समबडी एल्स ऑल्सो, आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ. बट कुछ आई थिंक लेस देन 50% ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड, बट उनकी सडन डेथ की वजह से फिल्म शेल्फ कर दी गई थी. एंड ईयर्स लेटर अनुभव सिन्हा केप दैट सेम टाइटल 10 एज ए ट्रिब्यूट टू हिम. And he made this film with Vishal Shekhar's music, which was extremely, and which is extremely popular.

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
3: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
4: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
3: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
5: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
6: इन प्लेनो।
5: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
8: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
9: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
10: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
11: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
16: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
17: हाँ।
16: घर रिलोकेट करनी है?
17: हाँ।
16: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
17: हाँ भाई हाँ।
16: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
18: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sirf India nahi, USA aur duniya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
19: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
20: Tracks that put you on the right track.

All right, ladies and gentlemen, you are tuned into Funisha Radio 104.9 FM, bringing the community together. कुछ ऐसी बात करना चाहती हूँ which is associated with that hello, यानी कि calls से related कुछ बात करना चाहती हूँ, and please be open to give me a call here because it is about calls and caller ID actually. 972-235-5555 हमारे स्टूडियो का नंबर है. यार मैं आपको ना वो प्री कॉलर आई डी जमाने में लेकर जाना चाहती हूँ. एंड आई वॉज जस्ट वंडरिंग जस्ट येस्टरडे, क्योंकि नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस लेकर आती हूँ और ये मैंने ना टॉपिक बताइएगा नहीं, मैंने सोचा था कि मैं अगले थर्सडे करूँगी, लेकिन मुझे ना रहा नहीं गया, इसीलिए मैं आज लेके आ रही हूँ ये टॉपिक. एंड द टॉपिक इज अबाउट द प्री कॉलर आई डी एरा दैट वी यूज टू लिव इन. प्योर मिस्ट्री की किसने कॉल किया है, दैट हाई एंजाइटी की किसी का आप कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो वो अटेंड करने के लिए, या किसी का कॉल आप लेना नहीं चाहते बट यू आर नॉट श्योर इफ यू शुड आंसर और नॉट, दोज काइंड ऑफ थिंग्स. एब्सोल्यूट मतलब क्या कहना चाहिए, एक ड्रामा होता था बिना कॉलर आई डी के. और तब दिमाग में ये आता भी नहीं था कि यार ये कुछ ऐसा कुछ होता कि पता चल जाता कि कौन कॉल कर रहा है तो कितना अच्छा होता. ये दिमाग में भी कभी नहीं आया अंटिल वी हैड कॉलर आई डी विथ अस एंड लाइफ बिकेम सो मच ईजियर फॉर ऑल ऑफ अस, राइट. लेकिन मुझे वो जानना है, वो जो एक टाइम था ना बिफोर द लेट 90s अर्ली 2000 जब फ़ोन कॉल्स एक ना सच में एक रशियन रूलेट का गेम हुआ करता था. और कभी कभी ऐसा होता था ना कि ऐसे कोई मतलब अगर आपका कोई क्रश भी अगर कॉल कर रहा हो और उसके साथ मतलब वो एसोसिएटेड फैक्ट कि भाई घर पे कोई भी फ़ोन उठा सकता है और वो अगर फ़ोन पापा या मम्मी ने उठा लिया तो क्या होगा, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स ऑल्सो मस्ट हैव हैपेंड विथ मेनी ऑफ यू. वन टू ओपन द कच्चा चिट्ठा ऑफ प्री कॉलर आई डी एरा. आर यू विथ मी हियर? 972-235-5555 स्टूडियो का नंबर.

0: शहर की ऑल लड़की लड़का मेन एंड वुमेन प्लीज गिव मी अ कॉल इफ यू रिलेट टू दिस टॉपिक एंड द टॉपिक इज प्री कॉलर आईडी. लेडीज एंड जेंटलमैन, और क्षितिज बड़े पेशेंटली होल्ड कर रहे हैं लाइन. थैंक यू सो मच क्षितिज फॉर होल्डिंग द लाइन. आपकी कहानी हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करो, जो वो लेट 90s की आप बात कर रहे थे. प्लीज गो अहेड.
1: जी हाँ, ओके.
0: हाँ जी, तो क्या? हाँ जी, गो अहेड.
1: जी हाँ मीठू जी, तो ये बात लेट 1990s की, अर्ली 2000 की, जब 10 बजे के बाद में एसटीडी कॉल ऑलमोस्ट हाफ हो जाती थी या क्वार्टर हो जाती थी.
0: बिल्कुल.
1: तो किस्सा तो आपका है कि जब आप फैमिली के साथ ही बाहर गए हुए, मम्मी पापा दीदी और आप,
0: हाँ.
1: और कार पार्क कर रहे हैं और ताला खोलने लगे और पीछे से घंटी बजे जा रही है. तो पहली बात तो 10 बजे के बाद पक्का किसी ना किसी ने एसटीडी पे ही कॉल किया होगा, कौन है भाई, कॉलर आईडी नहीं है. और ऊपर से मजा था, जब आस पड़ोस वाले बोलते हैं अरे भाभी जी कब से फोन की घंटी बज रही थी, कहाँ गए हुए थे आप लोग.
0: मतलब लोगों को भी पता चल रहा था कि अगर फोन कोई नहीं उठा रहा है तो ऑब्वियसली घर पे नहीं है. आज के दिन में तो आज के दिन में तो हमारा क्या होता है ना, कॉलर आईडी देख लेते हैं और जिनका फोन नहीं उठाना होता है हम उसकी रिंग जाने देते हैं, बजने देते. हाँ बिल्कुल. तब तो वो जमाना था कि लपक के हम फोन पकड़ते थे. थैंक यू सो मच क्षितिज. थैंक यू. एंड दिस इज द प्री कॉलर आईडी एरा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. व्हाट अबाउट द प्रैंक कॉल्स यार, कितनों को प्रैंक कॉल्स आया उस जमाने में? एक प्रैंक कॉल जिसकी बात मैं भी करना चाहूंगी यार. यू कम अप विथ योर स्टोरी फ्रॉम योर ट्रेजर चेस्ट ऑफ प्री कॉलर आईडी एरा. उसकी अपनी अपनी परेशानियां होती थी, अपना एक सस्पेंस थ्रिलर होता था. 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अ सॉन्ग दैट आई वांट टू प्ले फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि दिस टेक्स अस टू द 90s.

बात हो रही है हमारी प्री कॉलर आईडी एरा की बातें जो ये चल रही है ना. थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड फनी स्टोरीज आर कमिंग आउट. एंड इट इज दैट प्रैंक टाइम दैट इट यूज टू हैपन देन, क्योंकि तब तो हमें पता नहीं होता था ना कॉल कौन कॉल कर रहा है. तो कोई भी किसी को भी कॉल ऐसे ना, जब फोन का नया नया शौक था लोगों को, और यू नो दे वुड जस्ट, बच्चे तो अक्सर ये किया करते थे कि जस्ट ऐवें ही कॉल कर दिया, मजे लिए थोड़ी देर तक और फिर हंसी मजाक करके फ्रेंड्स के साथ रख दिया. ये इस तरह की चीज़ें बहुत होती थी, ये कॉर्पोरेट दुनिया में भी होती थी. भाई अनिल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ऑफिस स्टोरी हियर. ये अपने एक फ्रेंड के साथ, कॉलीग के साथ, फ्रेंड स्लैश कॉलीग के साथ ये लड़की की आवाज़ में बात करते थे, और वो एक कॉलीग ही थी जो लड़की जिनकी जिनकी आवाज़ वो निकाल के, मतलब उनका आइडेंटिटी लेके बात करते थे, और पूरी प्लानिंग शैनिंग बना ली थी किसी कहीं पे मिलने की. एंड व्हेन दैट हैपेंड, दैट बिकेम दैट सीरियस, दैट्स व्हेन दे लेट आउट देयर सीक्रेट. फिर तो पता नहीं क्या, मतलब जूते चप्पल क्या पड़े होंगे, उसके बारे में तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन रियली फनी द वे वी यूज टू डू इट. मुझे एक अपना प्रैंक कॉल याद आता है कि एक वो होता था ना जो मतलब बदमाश लड़के, यू नो, जो छेड़ा छाड़ी करने वाले लड़के जो होते थे, वो भी कॉल करते थे. लड़कियों का नंबर कहीं से मिल गया, बस उठा के फ़ोन कर दिया. तो ऐसे ही कॉल आया था, तो एक आध दिन बार बार बार बार आ रहा था, एंड इट गॉट मी वेरी वर्कड अप. एंड यू नो, मैंने एक बार ही कॉल उठाया और ऐसी कुछ बकवास और वो बंदा कर रहा था, लड़का कर रहा था. तो मैं बन गई झांसी की रानी, और मैंने उसके ना खूब झाड़ा उसको. वैसे मेरी वो आदत थी नहीं, मेरी वो पर्सनालिटी भी नहीं थी कि मैं झाड़ू, लेकिन मैंने ना किया. मैंने ना, यार अपन ना मतलब जोश में है और अपने ना बिल्कुल अपना एक स्टाइल दिखाते हैं कि भाई हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी मतलब खड़े हो सकते हैं अपने लिए एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो, ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला. तो बहुत अच्छे से झाड़ा मैंने और धड़ाक फ़ोन रख दिया. थोड़ी देर बाद फिर कॉल आया, मुझे लगा अब तो ये बंदा नहीं कर सकता, कोई और ही होगा, क्योंकि वंस अगेन कॉलर आईडी तो था नहीं तो चेक. तो मैंने फ़ोन उठाया और वहाँ से मुझे डांट पड़ गई कि इतनी बदतमीजी से आप बात कर रही हैं, आपको अच्छा लगता है ऐसे बात करते हुए? कुछ ऐसे मुझे लंबा लेक्चर दिया उस लड़के ने. कैन यू इमेजिन दैट? एंड दैट इज अ स्टोरी आई विल नेवर फॉरगेट रियली. सो दैट इज अ प्री कॉलर आईडी एरा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. महबूब साहब ने कहा कि एक नंबर हुआ करता था, 4-5 डिजिट का कुछ नंबर होता था कि जिस पे आप कॉल करो ना तो आपको वापस एक ब्लैंक कॉल मिलती थी. यार दिस इज सीरियसली अमेजिंग. आई मीन इट डेफिनेटली हाइटन्स आवर विल टू गो एंड पिक अप द फोन एट दैट टाइम, क्योंकि घर में ना खलबली मच जाती थी जब फोन आता था, फटाफट कौन जाके पिक करेगा, यू नो, किसका कॉल है.

0: It's the passion for, you know, the Bollywood music that brings us on this platform. Thank you very much for tuning into Gupshup Gali with me too. आप लोगों के साथ जो एक और पैशन की बात करना चाहती हूँ, जो आज की जनता बहुत प्रोएक्टिव है अबाउट, इट इज़ हेल्थ रिलेटेड, लेडीज एंड जेंटलमैन. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे आपको यू नो जो आपका डॉक्टर के साथ टाइम है, इट इज़ ए गुड अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू नीड, दे विल गिव यू दैट. पैशन हेल्थ primary care is the place. 214-666-6259, same day appointment aapko mil sakti hai yahan pe. Multidisciplinary teams that they have under one roof.
1: Kahan gaya, kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
2: Kaun sa?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर. विजिट श्रीकृष्णा.com.
4: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
5: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
4: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
5: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
6: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
7: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
8: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
9: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
10: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
11: Calculating route, rerouting.
10: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
11: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
10: क्यों?
11: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
10: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
12: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
11: Your new destination has arrived.
3: Immigration is a serious concern for our community. And when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
13: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
14: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
15: Kya matlab?
16: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
16: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
12: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
1: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
17: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
1: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
1: सच में सब संभालेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
18: Tracks that put you on the right track.

0: शादी।
1: यू आर लिसनिंग टू फर्नीचर रेडियो 104.9 FM गपशप गली विद मी टू में आपका स्वागत है। अगर आप अभी अभी ट्यून इन कर रहे हैं, स्टूडियो का नंबर है 9722355555। यहाँ पे ना आपको आपसे कुछ जो वार्तालाप करना चाहती हूँ मैं, इट इज टू डू विद दिस फिनोमिनन दैट मेनी ऑफ अस शेयर, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड से भी बात की, उन्होंने भी ये काम किया हुआ है और ये काम किया है मैं यही जानना चाहती हूँ आप लोगों से। ये मैं बताने वाली हूँ जस्ट राइट आफ्टर द सॉन्ग दैट आई एम गोइंग टू प्ले फॉर ऑल ऑफ यू, और उसके बाद कुछ बातचीत छेड़ेंगे यहाँ पर हम। एंड इट इज टू डू विद, चलिए थोड़ा सा मिस्ट्री एलिमेंट रखते हैं यहाँ पर, लेकिन एक जो मिस्ट्री बिल्कुल नहीं है एंड दैट इज श्री कृष्णा ज्वेलर्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वो जगह की जहाँ पे आप बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस लेकर जा सकते हैं इफ़ यू हैवंट बीन टू दिस ऑलरेडी, कि यहाँ पे आपके जो क्लासिक गोल्ड डिज़ाइंस हैं वो बेहद खूबसूरत मिलेंगे आपको। स्पार्कलिंग डायमंड डिज़ाइंस जो हैं बहुत ही नायाब हैं एंड यू कैन रेस्ट एश्योर दैट दे हैव अ ब्यूटिफुल स्टनिंग कलेक्शन ऑफ पोलकी एंड कुंदन ज्वेलरी एज वेल। श्री कृष्णा ज्वेलर्स जो कि 1967 से ज्वेलरी बनाते आ रहे हैं एंड दे आर नोन फॉर देयर फाइन क्राफ्ट्समैनशिप। आप जरूर जाइए टू देयर न्यू लोकेशन, इट इज 13145 सुइट 220 मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को। ऑलराइट, दैट्स श्री कृष्णा ज्वेलर्स एंड इट्स ए रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशन एलिगेंस एंड टाइमलेस ब्यूटी दैट दे ब्रिंग फॉर ऑल ऑफ अस राइट हियर इन आवर बैकयार्ड। जरूर जाइएगा इनके नए फ्रिस्को लोकेशन पर। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू फाइनेंशियल रेडियो। जी हाँ, एक सवाल जो मेरे दिमाग में है, आई वांट टू फाइंड आउट कि ये मैं और मेरे फ्रेंड्स ही करते हैं कि आप भी करते हैं। राइट आफ्टर दिस सॉन्ग।

0: यू आर ट्यून इन टू फनीशर रेडियो 104.9 एफएम. स्टूडियो का नंबर लिख लीजिए क्योंकि गिव अवे टाइम है आप लोगों के लिए 9722355555. अब सवाल क्या है? सवाल इज टू डू विद नियॉन, और वो नियॉन क्या कनेक्शन है वो मैं बताऊंगी, लेकिन गिव अवे के बारे में सुन लीजिए. नियॉन कैक्टस की तरफ से आप लोगों को $20 गिफ्ट कार्ड डाइन इन जो मिलने वाला है, विच बेसिकली मीन्स कि आपका जो भी फाइनल बिल होगा ना वहाँ पे, उसमें आपके ये जो $20 है ये बिल्कुल उसमें यू कैन ऐड टू इट एंड गेट दैट $20 ऑफ योर फाइनल बिल बेसिकली. So yes, this place, so which is a combo of Mexican and global influence that you will find, aur inke jo fresh ingredients hain, aur of course Zabiha Halal. Oh my God, Zabiha Halal options. How can I mess that word? Okay. Anyways, so ये सारे options आप लोगों के लिए, and you know for vegetarians there are plenty of choices. इसीलिए आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया जगह होगी. If you are into good food, you know, good Mexican food, और आपको अगर good vibe भी चाहिए तो ये जगह है आप ही के लिए. Neon Cactus, ladies and gentlemen, do remember that. And of course, happy hours Monday to Friday. Those curated cocktails and mocktails that they have for all of you, enjoy that. लेकिन एक किसी को ये $20 का गिफ्ट कार्ड मैं देने वाली हूं. सवाल इज टू डू विद मल्टी कलर शॉपिंग सिंड्रोम. क्या है ये, क्या बला है, यही बताने वाली हूं. कल एक्चुअली मैं कुछ शॉपिंग करने के लिए गई थी और वहां पे मुझे ना एक नियॉन कलर का, नियॉन ग्रीन कलर का शर्ट मुझे बहुत पसंद आया, सो आई गॉट दिस वन. एंड देयर वाज दिस अदर ब्लैक कलर शर्ट, द सेम काइंड इन ब्लैक कलर, दैट वॉज हैंगिंग ऑल्सो. यार ब्लैक तो हमेशा लेते रहते हैं, ये नियॉन इज रियली समथिंग, नियॉन ग्रीन इज समथिंग रियली डिफरेंट, ये लेती हूँ. और मैंने सारा पेमेंट वगैरह कर दिया यू नो जाकर, एंड निकलने ही वाली थी तो लगा कि नहीं यार वो ब्लैक भी रख लेती हूँ, ये मुझे पैटर्न इतना अच्छा लग रहा है कि वो वाला ब्लैक भी खरीद लेती हूँ. क्या आप भी ऐसा करते हैं कि अगर कोई शर्ट का पैटर्न या किसी ड्रेस का पैटर्न या किसी जीन्स या कुछ भी एक पैटर्न अगर अच्छा लगा तो उसमें मल्टीपल कलर्स उसी पैटर्न में आप खरीद लेते हैं? क्या आप भी मेरी तरह ये करते हैं? मुझे कुछ दोस्तों से पता चला कि दे ऑल्सो डू इट. आई वॉन्ट टू नो इफ दिस इज रियली ए फिनोमिनन इन इट सेल्फ. प्लीज गिव मी अ कॉल. द फर्स्ट वन टू गिव मी ए कॉल ऑन दिस टॉपिक विल विन फ्रॉम नियॉन कैक्टस. विल मैं फैशनिस्ता से यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि वो स्कैंडलाइज हो जाएंगे ये सुनकर, तो वो तो मैं कर नहीं सकती हूँ. लेकिन ये जानना चाहती हूँ कि ये जो भावना शेयर करती हूँ, यू नो टू बाय मल्टीपल कलर्स इन द सेम पैटर्न, ये क्या मेरी तरह और भी ऐसे प्राणी हैं क्या दुनिया में? यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हाय अनिल, दिस साइड, हाउ आर यू?
0: आई एम डूइंग फैब. टेल मी अनिल, are you in the same category as me or are you on the other side?
1: To be honest with you, like a week and a half ago I went out shopping with my wife and I bought the shirt with the three different colors, same patterns.
0: Yoo-hoo! This is an existing phenomenon. We can call it multicolor shopping phenomenon. Well, thank you so much, Anil.
1: And we can say that multicolor shopping syndrome, which is uncontrollable urge to shop.
0: Yes, and if you like something in different colors, the same thing. Oh gosh, yeah. I'm so glad.
1: And I was looking for V-neck, particularly white, and I find out 6-7 different colors. I say, you know what, I'll pick some.
0: I'll take them. I'm happy. I'm

0: देखिए जी, कॉम्पोजर्स को भी जब पता चलता है ना कि दो आवाजें इतनी खूबसूरत खिलती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान का जो ये गाना आपने सुना, इनकी आवाज एक दूसरे के साथ इतनी ज्यादा खिली कि ऑफ कोर्स दे सैंग टुगेदर अगेन एंड आई एम गोइंग टू प्ले अनदर सॉन्ग व्हिच हैड द टू ऑफ देम। तो अगर ये कॉम्पोजर्स, बड़े बड़े कॉम्पोजर्स कर सकते हैं, तो हम जो कॉमन मैन जो है, मैं कॉमन वूमन, यस, एंड ऑफ कोर्स हम जो लोग हैं, आम जनता जो है, वो क्यों ना करें यार। मैं कपड़ों की बात कर रही हूँ यहाँ पर, थोड़ी देर पहले यही बात हो रही थी ना कि भाई एक अगर स्टाइल पसंद आ गया, फिट अच्छा है, सब कुछ चंगा है, पैटर्न सही लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है, तो उसके डिफरेंट कलर्स हम क्यों ना खरीदें। अब अगर जितने भी फैशनिस्टास हैं वो स्कैंडलाइज हो रहे हैं तो हो रहे हैं, आई कांट हेल्प इट, बट रियली मैंने तो कई दफ़े किया है। अनिल के साथ भी ये बात पक्की हो गई है कि दुनिया भी करती है ये चीज़, मैं अकेली ऐसी बंदी नहीं हूँ। यू आर लाइव ऑन एयर, वेरी quickly if you can tell us ki aap karte ho ki nahi ho, you live on air?
1: Actually, yes, I am on air. I just wanted to, I know you got the answer, but I just wanted to share something. My name is RK, you know that?
0: Yes, RK, tell me.
1: Okay, I always, when I like something, I try to go for the bibjor, you know bibjor, right?
0: Haan ji, so all colors you get, 7 colors, huh?
1: Exactly.
0: Good for you.
1: I have a polo t-shirt which I have all the colors, red, green, blue, yellow.
0: अच्छा, कभी फिर ऐसे confusion नहीं होता कि अच्छा कल red पहना था तो मतलब आप क्या मतलब systematically फिर देखते हो कि आज red पहना था तो अच्छे 7 दिन एटलीस्ट उसके बाद वो red पहनेंगे, अब बीच में repeat नहीं होना चाहिए, लोगों को ऐसा नहीं लगे कि यार सेम ही चीज पहन रहे हैं, हैं?
1: You will not believe, once I get out of the shower, I just go and I just lift all the things and the evening I go keep it in the same position.
0: Huh.
1: So I know that I have not worn it now.
0: Yeah, exactly. Good way. That's an amazing way to keep a track of what you've worn and, be very, very cautious about not repeating it very often. Because ये भी एक थोड़ा झमेला हो जाता है ना कि अगर same type की अगर आपने pattern की खरीदी हो, style की खरीदी हो, तो वो color भले ही अलग हो लेकिन pattern समझ में आ जाता है लोगों को, है ना? तो इसीलिए ऐसे लोग क्या care कर रहे हैं, पहनना हमें है, हमें अच्छा लगना चाहिए. All that matters is we feel good about what we are wearing, right? So that given, I think मैं ये deduce कर सकती हूँ कि आप में से भी कई लोग करते हैं इसका मतलब.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Heere moti, main na chahun.
7: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy two, get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
8: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury aur excitement. सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम.
9: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
10: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
9: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
10: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
11: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
12: Hey! तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
13: लिया.
12: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
13: नहीं आया.
12: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
14: Visit www.sanadainc.com today.
15: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
16: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
11: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
17: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता, जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
13: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
14: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
18: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिजल्ट्स में वेरी।
19: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम। Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
20: Tracks that put you on the right track.

एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये गाना जो था मोहित चौहान के साथ अंतरा मित्रा कार. अंतरा मित्रा इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे, और इससे बेहतर क्या ही गाना लगा सकती हूँ मैं. लेकिन एक्चुअली इससे एक और बेहतर कहूँ कि इसी जैसा मेलोडियस एक और गाना जो मैं आप लोगों के लिए प्ले करना चाहती हूँ. इट इज़ हर बर्थडे एंड ये मेरा प्लेजर है कि मैं आप लोगों के लिए एक और ऐसा खूबसूरत सा गाना विच शी सैंग विद अरिजीत सिंह दैट आई वॉन्ट टू प्ले फॉर ऑल ऑफ यू. आफ्टर ऑल आपका और हमारा कनेक्शन म्यूजिक है जो ये प्लेटफॉर्म हमें एक साथ लेकर आता है, इस प्लेटफॉर्म पे हमें एक साथ लेकर आता है. करेक्ट. सो लेट्स गो टू दिस नेक्स्ट ट्रैक एंड लेट्स टॉक अबाउट फीफा इन दिस सेगमेंट. दिस इज द फीफा फीवर सेगमेंट लेडीज एंड जेंटलमैन. दैट इज व्हाट कमिंग अप फॉर यू नेक्स्ट. लेकिन कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन हम साथ ही साथ करते रहेंगे. डबल स्पेशल दैट दिस सेगमेंट ऑब्वियसली बिकम्स देन, है ना. Keep listening to Gupshup Gali with me too.

अरिजीत सिंह की आवाज़ तो हमेशा ही सेलिब्रेट करते थे लेकिन करते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा अंतरा मित्रा को सेलिब्रेट कर लिया जाए। बैक टू बैक उनके गाने मैंने सुनवाए क्योंकि इट इज़ हर बर्थडे टुडे एंड इट इज़ नॉट द बर्थडे दैट आई वांट टू सेलिब्रेट। और इसके लिए एक गाना लगाने वाली हूँ क्योंकि राघव जुयाल वो हैं जो आए तो लेट हैं लेकिन ऐसे आए हैं कि यू नो यू आर ईगर टू वॉच हिज फिल्म्स, राइट? सो गेट रेडी फॉर दिस नेक्स्ट वन दैट ही इज़ गोइंग टू स्टार इन। इट इज़ कॉल्ड भाई तेरा स्टार है। इट इज रिलीजिंग ऑन 30th of July एंड राघव जुयाल को एक और अच्छे से रोल में देखेंगे। दिस इज अ कॉमेडी फिल्म दैट्स कमिंग अप एंड इट इज हिज बर्थडे टुडे एंड देयरफॉर आई एम टॉकिंग सो मच अबाउट हिम। लेकिन साथ में एक सुपरस्टार की भी बात हो जाए यहाँ पे क्रिकेट के मैदान में, जो सुपरस्टार उनकी बात क्योंकि 77th बर्थडे दैट ही इज सेलिब्रेटिंग, द फर्स्ट ट्रू बैटिंग सुपरस्टार इन क्रिकेट दैट वी हैड इन इंडिया एंड दैट सुनील गावस्कर, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिन्होंने एक पूरे जनरेशन को इंस्पायर किया विद द बिलीव दैट इंडिया कुड कम्पीट एंड सक्सीड ऑन द वर्ल्ड स्टेज। दैट ब्रिंग्स मी टू द वर्ल्ड कप स्टेज, फीफा वर्ल्ड कप स्टेज। येस्टरडेज हाई स्टेक नॉकआउट जो एक क्लैश हमने देखा बिटवीन फ्रांस एंड मोरक्को, दैट डिलीवर्ड ए प्योर अनएडल्ट्रेटेड फुटबॉल थिएटर फॉर श्योर। फ्रांस एंटर द पिच लुकिंग लाइक एब्सोल्यूट टाइटन्स। ओपनिंग विसल से ही उनका जो क्लिनिकल टैक्टिकल स्ट्रक्चर था और टेरिफाइंग जो पेस था कम्प्लीटली डोमिनेट कर रहा था, विद एम्बापे यू नो ऑपरेटिंग ऑन एन एंटायरली डिफरेंट गियर दैट यू कुड सी स्लाइसिंग थ्रू द लाइन्स विद एब्सोल्यूट कम्फर्ट एंड ईज एंड प्रिसिशन एक्चुअली। और मोरक्को की भी जो है डिफेंस बहुत सही थी, बिल्कुल ब्रिक वॉल, सॉलिड एब्सोल्यूट ब्रिक वॉल दैट इट वॉज। दोनों टीम्स ने एक दूसरे को एक मतलब बेहतरीन टक्कर दिया जो एक क्वार्टर फाइनल के स्टेज पे होना चाहिए एंड टिल हाफ टाइम नो टीम कुड एक्चुअली स्कोर ए गोल। फर्स्ट हाफ बिल्कुल 0-0 के डेडलॉक पर ही खत्म हुआ था। कमिंग आउट इनटू द सेकंड हाफ मोरक्को कंप्लीटली लॉक डाउन देयर डिफेंसिव थर्ड एंड लॉन्च ए सीरीज ऑफ लीथल ब्रेकिंग काउंटर अटैक्स जिसमें फ्रेंच बैकलाइन बिल्कुल प्रेशर में आ गए थे अंटिल दे एब्सोल्यूटली सॉर्ट ऑफ वेंट इन फॉर द फाइनल विसल। अल्टीमेटली द हैवी वेट्स यूज देयर इमेंस टूर्नामेंट एक्सपीरियंस टू ब्रेक दैट डेडलॉक, एब्जॉर्ब द प्रेशर, park the bus and close out the match to seal their spot in the semi-finals. And how, ladies and gentlemen, Morocco ka definitely dream run khatam hua, kafi heartbreak unke fans ko bhi hua, but they exit the global stage with absolute dignity and the respect of the entire football world for sure. Isme to koi doubt hi nahi hai. And once again, ladies and gentlemen, this is FIFA Fever segment for all of you that we are having in this show, jiska naam hai Gapshap Gali, aur mera naam Meetu. Until 12:30, I'm with you.

लिसन, अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं या फिर आपको रीफाइनेंस करवाना है या यू नो एनी काइंड ऑफ मोर्टगेज रिलेटेड सिचुएशन दैट यू हैव दैट यू नीड कंसल्टेशन ऑन, मे वी सजेस्ट मिस्टर हुसैन पंजवानी फ्रॉम ड्रीम होम मोर्टगेज. और मेरे शो पे हर मंडे को 10:30 इन द मॉर्निंग यू कैन गेट सम टिप्स एंड एडवाइसेस फ्रॉम हिम फर्स्ट हैंड. जी हाँ, बहुत सारे एक बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाते हैं और यही चीज़ मुझे उनकी बहुत पसंद आती है कि वो चीज़ें आसान कर देते हैं. और जब चीज़ें आसान हो समझना ना, तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. बट नॉट एंटिल यू गेट दैट प्रोफेशनल हेल्प, बिकॉज दे डेफिनेटली नो वट दे आर डूइंग, बिकॉज क्लोज टू 30 years ऑफ एक्सपीरियंस दैट दे ब्रिंग ऑन द टेबल. ड्रीम होम मोर्टगेज ज़रूर याद रखिएगा. dreamhomemortgage.com इज दैट वेबसाइट एंड द नंबर टू कॉल इज 9722455626. यानी कि अगर रात को अच्छी नींद सोना चाहते हैं तो सही प्रोफेशनल्स के पास जाना बहुत जरूरी है. और जहां तक बॉलीवुड म्यूजिक का सवाल है, तो बिल्कुल सही जगह पे आप टिके हुए हैं. और ऐसे ही बने रहें हमारे साथ, चिपक के सुनते रहें फनीशर रेडियो 104.9 FM. गपशप गली में और इस सेगमेंट में जिसका नाम है फीफा फीवर, आई डू वॉन्ट टू टॉक अबाउट टूडेज मैच. लेडीज एंड जेंटलमैन, ए 40-year-old score to be settled down between absolute heavyweights Spain versus Belgium that we are in for. Spain and Belgium talking about their epic 1986 FIFA World Cup quarterfinal. और तब ये हुआ था कि मेक्सिको में गेम चल रहा था एंड द टू टीम्स टाइड 1-1 आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम. और फिर पेनल्टी शूट आउट तक गया एंड फाइनली बेल्जियम वन. आज फिर एक बार यूरोपियन फुटबॉल रॉयल्टी आमने सामने होने वाली है एंड दिस गेम इज गोइंग टू बी ए प्योर टैक्टिकल मास्टर क्लास फॉर ऑल यू नो. एक तरफ है स्पेन विद देयर ट्रेडमार्क लाइटनिंग फास्ट टिकी टाका पासिंग गेम एंड इलेक्ट्रिक यंग विंगर्स दैट यू विल बी सीइंग, जो कि डिफेंस को स्लिट कर सकते हैं एक ही सेकंड में, यू नो स्प्लिट सेकंड में स्लिट कर सकते हैं, दैट्स व्हाट आई कैन से. और दूसरी तरफ बेल्जियम, जो कि रेड डेविल के नाम से जाने जाते हैं, हु ब्रिंग मैसिव फिजिकल स्ट्रेंथ, incredible tournament experience and lethal counter attacks that can catch you off guard absolutely before you even blink. ये game speed versus power का होने वाला है. Can Spain actually control the midfield possession like true maestros? ये तो देख के पता चलेगा. बाकी Belgium भी पूरी तैयारी से है अपने physical strength को, कि वो जो स्पैनिश मिडफील्ड को बिल्कुल चोक करने के लिए तैयार है. विल फाइंड दैट आउट इन ए लिटिल बिट, प्रिसाइसली आफ्टर 1.5 hours. 2 बजे शुरू होने वाला है एंड इट इज एट द सोफी स्टेडियम, इंगलवुड, कैलिफोर्निया. एंड गेस व्हाट, अगर आप घर पे ये किसी या किसी लेट्स से वॉच पार्टी पे जाकर ये मैच देखने वाले हैं, देन यू हैव जस्ट सेव्ड एटलीस्ट $1,000, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि लोएस्ट टिकट प्राइस एट दिस गेम टूडे इज गोइंग टू बी at 1070. Thank you for tuning into Fun Asia Radio 104.9 FM.

0: क्या आपको भी वही लगता है जो मुझे लगता है कि भाई म्यूजिक ऑलवेज साउंड्स बेटर ऑन फ्राइडे? That's right. Never ever underestimate the importance of having fun. मैं जा रही हूँ फन करने के लिए, बाकी आप रहें फनीचर रेडियो 104.9 FM पे. Keep listening. Up next is Simi for all of you. Oh, correction. It's Rimita for all of you. और मुझे आज के लिए और इस हफ्ते के लिए इजाजत दें. This is me too signing off for the week.
1: You're earning well, but are you paying more taxes than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG FinTax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG FinTax. Plan smart, save more.
2: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
3: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday,
2: all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
4: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
5: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
4: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
5: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
4: और एंटरटेनमेंट,
5: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
4: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
5: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
11: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
12: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
2: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
11: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
13: भूख लगी, जोरों की भूख लगी।
14: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
15: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
2: अ क्विक बाइट, अ perfect lunch ambience and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to page 3. Have 121 McKinney.
16: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
17: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
16: Kya matlab?
17: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
16: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
17: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
16: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
18: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
19: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
6: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
19: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
6: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।

38 minutes past 12 o'clock and you're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. Aaj hai 10th of July and it's a Friday for me because Friday ko na Friday nahi bola ja sakta hai. It's actually mein Friday. So a very happy Friday DFW. This is your RJ for today. This is Ramita और अगले दो घंटे के लिए वेलकम है आप सबका फिल्मी फ्राइडे में, जहां बात होगी बॉलीवुड की, म्यूजिक की, स्टार्स की, नए ट्रेलर्स की, थिएटर रिलीजेस की, OTT रेकमेंडेशंस की और ऑफ कोर्स आपकी. अगर पूरे हफ्ते ऑफिस, मीटिंग्स, स्कूल्स, डेडलाइंस, इन सब में बिजी रहे हो तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज के ये जो दो घंटे हैं ना, ढाई बजे तक हम करेंगे पूरा बॉलीवुड वीकली रैप. तो फोन पास रखिए, व्हाट्सएप खुला रखिए, क्योंकि क्रश के टेक्स्ट्स कभी भी पॉपअप हो सकते हैं. और शुरू करते हैं म्यूजिक के साथ दिस फिल्मी फ्राइडे ओनली ऑन 104.9 FM फनीशिया रेडियो.

You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio, and this is Filmy Friday with me, Ramita. और this song, जैसे कि बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को पता नहीं भी है, चलो जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता दूं, this song has been sung, I mean female voice तो काफी trending है ही, सबको पता है कि नीलांजना घोष दस्तीदार जो है, point to be noted, she's a Bengali as well like I am. Nilanjana Ghosh Dastidar is the female singer. और guess करो male singer कौन है? जी हाँ, if you have guessed it right, कोई giveaway question नहीं है, ये simple सा info में share कर रही हूँ आपसे. This is Vedang Raina. Who Vedang Raina? The lead actor of the movie मैं वापस आऊँगा. चलिए फिल्मी Friday को और थोड़ा सा ज़्यादा फिल्मी बनाते हैं, क्योंकि आज की सबसे बड़ी Bollywood discussion शुरू होने वाली है विद द डिस्कशन ऑफ लास्ट वीक्स फिल्म रिलीज, जो की थी आलिया भट्ट और शर्वरी की अल्फा. जी हाँ, अपने पहले वीक कंप्लीट कर चुकी है ये मूवी और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस स्टेडी रन कर रही है. बट ये ना, द इंटरनेट और द रिव्यूज आर डिवाइडेड इनटू टू halves, I can say that, because critical response और थोड़ा सा ना general public की थोड़ी rant videos हम बहुत सा देखते हैं on social media, and there are positives and negatives as well, जो हर किसी films में होता है, but पल्ला थोड़ा negatives में भारी है. चलिए पहले positives की बात कर रहे थे, क्योंकि audience and critics ने इसकी thrilling action को बहुत सारा praise मिला है इसको. आलिया और शर्वरी की केमिस्ट्री इज ऑल्सो कमेंडेबल, और हमारे प्यारे ऋतिक रोशन की जो हाईली एंटिसिपेटेड कैमियो थी, दैट हैज ऑल्सो रिसीव्ड अ मैसिव क्राउड रिस्पॉन्स. बट नेगेटिव ऑफ दिस फिल्म इज, मैं तो एक वीडियो में ऐसा भी देखा था कि भाई स्क्रिप्ट राइटर्स ने चैट जीपीटी से इसका स्क्रिप्ट और स्टोरी लिखवाया है, क्योंकि बहुत सारे यू नो देर आर ब्लिंक्स, आई मीन मिसेज इन दिस स्टोरी लाइन, स्क्रिप्ट बोलिए, स्क्रीन प्ले बोलिए, बिल्कुल कनेक्शन नहीं आ रहा था. स्पाई यूनिवर्स, YRF स्पाई यूनिवर्स होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी होने के बाद भी, एक लैक ऑफ इमोशनल डेप्थ, इट कुडंट कनेक्ट. और जनता जनार्दन वही है हमारी पब्लिक का जो फाइनल वर्डिक्ट होता है ना, अगर कनेक्शन नहीं आए तो भाई जितने भी बड़े नाम हो प्रोडक्शन हाउसेस की या फिर एक्टर्स की, नहीं कर सकते. चलिए अल्फा की ही बात हो रही है, देन स्विच ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग विच इज मैसेकर है. क्या लग रहे हैं दोनों? कीप लिसनिंग एंड एंजॉय दिस ट्रैक फ्रॉम अल्फा.

आपका दिल तो बुम बुम बोल रहा है, पर कभी नोटिस किया है कि आपका हेल्थ आपको क्या बोल रहा है? क्या दस्तक है आपके हेल्थ की आपके लिए? व्हाट इज द कम्युनिकेशन दैट योर एंटायर बॉडी मेक्स विथ यू? जी हाँ, सिम्टम्स जो है आपके बॉडी में, प्लीज प्लीज प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज हेल्थ है तो भाई वेल्थ है. क्यों इतना सारा ज्ञान बटा जा रहा है अभी? क्योंकि एक्चुअली में इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट योर हेल्थ, देन कोई मतलब नहीं है ना जिंदगी में. इतनी भाग दौड़, पढ़ाई लिखाई, काम, अपना हॉबी, अपने घर, बच्चे, क्या फायदा अगर खुद ही नहीं पैशनेट हो आप अपने हेल्थ को लेके? अगर आप नहीं भी हो, बट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज पैशनेट अबाउट योर हेल्थ. सच बोलिए, आपके जो डॉक्टर्स हैं प्राइमरी केयर वाले, तो वो आपके साथ कितने टाइम स्पेंड करते हैं पर अपॉइंटमेंट? 5 मिनट, 10 मिनट? क्योंकि पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर में हर अपॉइंटमेंट इज शेड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स, क्योंकि वो जानते हैं और वो समझते भी है कि आपके ना जो हेल्थ है, इट टेक्स टाइम टू इवेलुएट योर हेल्थ कंसर्न्स. एंड ऑफकोर्स पेशेंट्स के साथ बॉन्डिंग भी तो जरूरी है ना, क्योंकि पैशन हेल्थ इज जस्ट नॉट अ मतलब आप पैशन हेल्थ के लिए एक सिर्फ पेशेंट नहीं है, यू आर एक्चुअली अ फैमिली टू देम. एंड फॉर यू, योर फैमिली, एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी, देर इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. 30 मिनट्स इज ऑल इट्स टेक्स टू कंप्लीट योर एनुअल फिजिकल, एंग्जाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न, विटामिन B12 डेफिशियंसी टेस्टिंग, और भी बहुत कुछ इज अवेलेबल एट पैशन हेल्थ. सो यू कैन शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट एनी टाइम और यू विल गेट दैट अपॉइंटमेंट ऑन दैट सेम डे. सो यू कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट, बिकॉज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, दैट इज योर हेल्थ इज देयर पैशन.

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
2: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
3: Documents ya parcel bhejni hai?
4: हाँ.
3: घर रिलोकेट करनी है?
4: हाँ.
3: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
4: हाँ भाई हाँ.
3: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
5: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
3: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
6: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
3: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
6: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
3: ये क्या होता?
6: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
0: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
1: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन. Available. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
1: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
7: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. Call now 9455270897 or visit astrologer ईश्वर.
8: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
1: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At ShopCompareInsure.com, we're not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
7: Visit ShopCompareInsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
9: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
10: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
9: सच में? सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
1: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.

You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio and मैं हूँ रमिता on her show Filmy Friday. It's a Friday नहीं Friday जो कि मैं हमेशा कहती हूँ. 10th of July है और आज release होने वाली है धमाल 4 जिसका गाना सुन रहे थे आप संजू राठौर के आवाज में featuring a wide star cast. I mean ensemble cast अगर होना हमेशा इस franchise में starring अजय देवगन रितेश देशमुख अर्शद वारसी जावेद जाफरी और आई हैव जस्ट पॉइंटेड आउट कि ये जो धमाल 4 है ना इस फ्रेंचाइजी में ओनली दीज टू पीपल आई मीन अर्शद वारसी एंड जावेद जाफरी आर द वंस रेकरिंग ऑलवेज और उसी आदि और मानव के कैरेक्टर्स में आई मीन आई नो रितेश देशमुख वॉज पार्ट ऑलमोस्ट पार्ट इन ऑल द सीरीज बट उनके कैरेक्टर्स चेंज होते हुए हैं बट आदि और मानव इंटैक्ट यार फैन बेस है उनकी क्या कर सकते हैं. सो स्पीकिंग अबाउट देयर थिएट्रिकल रिलीज विच इज हैपनिंग टुडे इट्स अ कॉमेडी कॉमेडी अगर आपको क्रेजी कॉमेडी पसंद है और हाथ पैर ना हो उस कॉमेडी के वैसे वाले कॉमेडी फिल्म्स पसंद है हमारे वाले कॉमेडीज जो अर्ली 2000s में होते थे यार वो वाले कॉमेडी फिल्म्स पसंद है तो जाइए टिकट्स बुक करिए या फिर I don't know. अगर आप मेरी तरह के थोड़े दिन के लिए OTT पे रिलीज करने के लिए वेट करते हो तो मुझे पता नहीं. मेरा काम था आपको बोलना कि दिस इज रिलीजिंग टुडे. और एक सरप्राइजिंग बात बताओ चलिए बता ही देती हूँ आपके और मेरे बीच में रहेगी. दिस फिल्म यानी कि धमाल 4 हैज अ स्पेशल ट्रिब्यूट टू द लेट सतीश कौशिक जो कि फीचर थे इन द डबल धमाल यानी कि इंद्र कुमार जी ने एक स्पेशल ट्रिब्यूट दे दिया है इस फिल्म में तो अभी इसको देखने के लिए थिएटर में जरूर जाना. लेडीज एंड जेंटलमैन दिस फिल्मी फ्राइडे डबल धमाल धमाल 4 इज रिलीजिंग और मेरे ख्याल से मस्ती के बाद आसान नहीं है ऐसा एक फ्रेंचाइजी चलाना वो भी फोर्थ पार्ट. आई मीन इट्स नॉट ईजी. मस्ती वॉज द वन दैट आई रिकॉल राइट नाउ जिनके इतने सारे पार्ट्स या सीक्वल्स आए हुए हैं थिएटर्स में. सो डबल धमाल अगेन धमाल 4 फॉर यू रिलीजिंग टुडे.

1:14 by the studio clock and you're listening to 104.9 FM Funisha Radio. मैं हूँ रमिता on show Filmy Friday. Back to back दो गाने from the movie है जवानी तो इश्क होना है. और इसी मामले में मुझे याद आया, I mean, I can rephrase it like this, like, कि है पैसे तो खर्च होना है. वाह वाह वाह वाह. But I still have one thing to tell you कि पैसे ना जितने आने हैं जाने हैं मानती हूँ, बट उसके सेविंग्स के लिए भी तो सोचना है, टैक्स प्लानिंग के लिए भी तो सोचना है, राइट? इसीलिए यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न ऑल अबाउट इट बिकॉज AG फिनटैक्स, विच इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द US, आज लेके आ रहे हैं आपके लिए एक सेमिनार. येस, एंड इफ यू आर अ बिजनेस ओनर हु इज अर्निंग मोर देन $200,000 एनुअली, तो ये सेमिनार और सिर्फ आपके और आपके लिए ही है. एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री टैक्स प्लानिंग सेमिनार जहां पे लीगल स्ट्रेटजीज के साथ साथ और भी बहुत कुछ सीखा जाएगा, राइट? स्मार्ट प्लानिंग विदाउट एनी बर्डन. टुडे एट 6 PM ऑनवर्ड्स ओनली एट फन पिज्जा किचन फ्रिस्को. जी हाँ, अभी सिर्फ खाली पेट थोड़ी पढ़ाई होती है, थोड़ा पिज्जा भी खा लेना उसके साथ साथ. यू कैन रजिस्टर दिस सेमिनार एट agfintax.funisha.net, दैट इज द वेबसाइट, विच इज agfintax.funisha.net. सो फन पिज्जा किचन फ्रिस्को में 6 बजे से शुरू होने वाली है दिस सेमिनार बाय AG फिनटैक्स, एंड द ओनर अनिल ग्रंथी विल बी देयर विथ हिज टीम, एंड यू कैन हैव ऑल द इनसाइट्स अबाउट टैक्स प्लानिंग. दिस इज रुमिता विथ हर शो फिल्मी फ्राइडे.

You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio. This is a Filmy Friday with me, Ramita. And this was Vishal and Shekhar from the movie Bang Bang. Yaar, ye to radio mein sun rahe ho, yaar. Agar live sunna hai, to koi plans hai kya? नहीं है, अब तक नहीं है, क्योंकि परसों ही तो है उनका कॉन्सर्ट. जी हाँ, संडे जुलाई 12th एट द कर्टिस कलविल सेंटर इन गार्लैंड. विशाल एंड शेखर आर हियर एंड विल बी हियर विद देयर सुपर हिट टूर. तो बॉलीवुड फैन अगर है मेरी तरह, और उनके म्यूजिक के भी फैन है, और कभी नोटिस किया है आपने कि उनके सारे जो गाने हैं, almost, I mean 90% of their songs are super hit, and that's why the name suggests it is the super hit tour. Vishal and Shekhar, the duo behind the Bollywood biggest super hits, aur hamare playlist jo maximum gaane unke hi to hai. Party song ho, dil टूटने वाले हो, या फिर ऐसे रोमांटिक गाने, कोई भी उनके गाने पसंद हैं, उनके हुक स्टेप्स के साथ सीख के जरूर आना एट द कर्टिस कलविल सेंटर इन गार्लैंड. विशाल के लिए नहीं तो शेखर के लिए थोड़ा जरूर आ जाना, क्योंकि हार्ट थ्रॉब है यार, क्या कर सकते हैं.

0: You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. चल रहा है फिल्मी फ्राइडे विद मी रमिता. और ना आजकल ट्रेलर्स के भी तरीके से मतलब मूवीज से कम एक्साइटिंग नहीं होते. कभी कभी ट्रेलर देख के लगता है भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो इसका तो जाना ही है. और कभी कभी ट्रेलर देख के हम डिसाइड ही कर लेते हैं कि यार ओटीटी के लिए वेट करेंगे. सच बताइए, आप ट्रेलर देख के मूवी डिसाइड करते हैं या एक्टर देख के? मतलब शाहरुख खान है तो देखनी ही है और रणबीर कपूर है तो देखना ही है. आई डोंट नो, आई तो वेट फॉर द इनिशियल रिव्यूज. भाई देख लूँ सुन लूँ, क्या पता कैसा निकले. तो सवाल यही रहेगा, मूवी चूज कैसे करते हैं? इसके बारे में और भी चर्चा होगी इस शो में. टिल देन आई विल बी कमिंग बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक.
1: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
2: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
1: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
2: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
1: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
2: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
1: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी.
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
6: वेट, इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं हीरो.
8: Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
9: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
8: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
11: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
12: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
11: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
13: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
14: इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग. और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 469-298-3870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
15: माई टाइम इक्विरी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड लोन्स and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
16: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
17: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
18: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
19: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday,
18: all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.

जानकारी के अनुसार दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा डिंपल दीक्षित उड्डी ने बगैर परमिशन आगरा फोर्ट में एक रॉक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर दिया है, जिसके कारण बहुत सारी भीड़ उमड़ आई है और एसपीसीटी आगरा ने उन्हें यहाँ से निकालने का आदेश

धुन की तो लगना ही था यार। फ्राइडे है, ओ सॉरी फ्राई ये है, और आप सुन रहे हैं फनी शर रेडियो 104.9 एफएम एंड दिस इज फिल्मी फ्राइडे विद मी रमिता, जहां पे फिल्मी है सारी बातें और फिल्म की ही बात होगी आज इस शो में, क्योंकि मेरी मर्जी है यार, मेरा शो है, मैं डिसाइड करूंगी। सबसे पहले आज के जो रिलीजेस है, बिग रिलीजेस, उसके बारे में चर्चा हो रही थी थोड़ी देर पहले, एंड दैट वाज धमाल 4 जिसका रिलीज डेट आज है। उसके साथ साथ एक बहुत ही बड़े मेजर ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक कोर्ट रूम थ्रिलर रिलीज होने वाला है जिनका नाम है इक्का, एंड दैट इज गोइंग टू स्ट्रीम फ्रॉम टुडे, जिसमें सनी देओल और अक्षय खन्ना 30 साल बाद नजर आ रहे हैं एक साथ। साथ ही पति पत्नी और वो दो स्टारिंग आयुष्मान खुराना एंड ऑल दीज थ्री लवली लेडीज, जिनके नाम अगर मैं बोलने जाऊं तो मेरा आधा खत्म हो जाएगा शो। और अगर आपको साउथ के फिल्म्स पसंद है मेरी तरह तो देखना ना भूलिएगा पेद्दी, वो भी इस वीक की बड़ी ओटीटी रिलीज में शामिल होने वाली है। आई मीन इट हैज ऑलरेडी बीन रिलीज बट ओटीटी में यू कैन वॉच पेटी एज वेल। तो वीकेंड का वॉच लिस्ट बन गया, तो घर बैठे जो भी एक कोई भी मूवीज अगर इंजॉय करनी है, चाहे वो इक्का हो, पति पत्नी और वो दो हो, या फिर पेद्दी हो, एनीथिंग यू कैन वॉच। वीकेंड का वॉच लिस्ट मैंने दिया है, देख लेना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, और ऐसे ही वीकेंड में स्क्रोल करके मत बिता देना, थोड़ा सा मूवी शूवी देख लो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फिल्म्स देखना। ऐसी तरह ज्ञान बांटना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है आपको सही इन्फॉर्मेशन देना और अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनाना। कमिंग बैक आफ्टर दिस सॉन्ग विद गिव अवे क्वेश्चन, जो कि रिलेटेड है इसी इन्फॉर्मेशन में, चलिए बता ही देती हूँ, क्योंकि कॉल्स मुझे ऑलरेडी आना शुरू कर देते हैं जब भी मैं गिव अवेज अनाउंस करती हूँ। स्टूडियो का नंबर इज 9722355555। क्वेश्चन यही होगा या है कि सनी देओल और अक्षय खन्ना 30 साल पहले ऐसी कौन सी मूवी है जहां पे साथ साथ नजर आए थे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिवियल क्वेश्चन, येट आई एम श्योर मेरी तरह अगर आप बॉलीवुड बफ हो यू कैन आंसर इट, और आंसर करने पे क्या मिलेगा वो बताऊंगी मैं इस छोटे से गाने के बाद।

कुविंदर सिंह और सैफ अली खान ने शायद मिलके अपना दिल हार लिया है, पर किसी और ने ये गिव अवे जीत लिया है, एंड दैट इज श्लोका शाह. कंग्रेचुलेशंस, यू विन अ गिव अवे फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स, एंड विच इज अ $10 ऑफ ऑन अ बिलिंग ऑफ $50, और ये ऑफर वैलिड है सिर्फ डाइन इन में. पहले तो ये बता दूं कि क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था. आज रिलीज होने वाली है इक्का ऑन एन ओटीटी प्लेटफॉर्म, और इसमें दिखने वाले हैं सनी देओल और अक्षय खन्ना. तो सवाल ये था कि 30 साल पहले सनी देओल और अक्षय खन्ना कौन सी ऐसी मूवी थी जहां पे साथ साथ दिखे गए थे. एंड द आंसर वाज सिंपल. हमारे बॉलीवुड बफ डैलस ने कॉल्स पे कॉल्स एक तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख की तरह कॉल करके मुझे बताया है, एंड बताया है सारे आंसर्स. बट द लकी वन इन द फर्स्ट कॉलर वॉज श्लोका शाह. कंग्रेचुलेशंस, यू विन द गिव अवे फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स. चंडीगढ़ बाइट्स में यू कैन ऑल्सो एंजॉय द स्पेशल थाली विच इज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद देयर एक्साइटिंग न्यू डिशेज रोटेटिंग डेली, एंड दैट इज फॉर लंच ओनली. सो लोकेटेड इन मैकडरमॉट ड्राइव इन एलन, यू कैन विजिट chandigarhbites.com ऑल्सो फॉर द फुल मेन्यू एंड फॉर फर्दर डिटेल्स. टिल देन, दिस इज रुमिता ऑन हर शो Filmy Friday, only on 104.9 FM, Funisha Radio.

1:55 by the studio clock. You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio with me, Rumita. और दिल की ना सुनो अभी, कम से कम अपने पेट की तो सुन लो यार. फ्राइडे है, अभी 2 बजने को है. अभी तक अगर खाना नहीं खाया है तो खा लो, लंच का प्लान बना लो. और लंच का प्लान अगर बन चुका है, खाना भी खा लिया है, तो डिनर का बना लो. और इसीलिए तो मैं हूँ अभी, क्योंकि फिल्मों की बात हो रही है और Page 3 की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. कनेक्शन अच्छा जोड़ा है मैंने, बट बात होने वाली है Page 3 ईटरी की, यानी कि सिजलिंग कबाबों के साथ साथ वो जो फ्लेवरफुल चाट है ना, जो आपके प्लेट में ऐसे सजा धजा के वो लोग पेश करते हैं, क्या ही बताओ. उसके साथ साथ वो जो रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स, याद आ गया, मेरा खाना याद आ गया. एट द Page 3 ईटरी, विच इज लोकेटेड एट द हब 121 इन मकेनी. अगर अभी तक आप नहीं गए तो प्लीज जाइए, बिकॉज सीरियसली यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. यानी कि अगर आप इंडियन स्ट्रीट फूड के शौकीन है मेरी तरह, एंड उसके साथ साथ थोड़ा सा ट्विस्ट, मॉडर्न फ्लेयर जो वो लोग डालते हैं, ले जाके आओ यार. बहुत ही कमाल का है उनका टेस्ट. ब्रंच हो, लंच हो, डिनर हो, डेट नाइट हो, या फिर ऐसे ही खाने पे चले गए हो सब, Page 3 विल ब्रिंग द परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लेवर, एनर्जी और वाइब्रेंट वाइब्स. स्पेशली उनकी जो डेकोर है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. तो Page 3 एट हब 121, और मेन्यू के लिए चले जाओ Page 3 eatery.com पर. मे बी टेक योर मशूका दिस टाइम. व्हाट से.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
3: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
4: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
5: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
3: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
6: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
7: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
8: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
9: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
10: You're earning well, but are you paying more taxes than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG FinTax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG FinTax. Plan smart, save more.
11: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
12: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
10: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.

7 minutes past 2 o'clock. You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Filmy Friday with me, Ramita, जहाँ पे बातें होंगी नए फिल्म रिलीजेस की, चाहे वो थिएटर्स में हो या OTT में. और पिछले हफ्ते, इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में जितने सारे हिंदी मूवीज या फिर रीजनल मूवीज या फिर इंग्लिश मूवीज जो भी रिलीज होंगी, और हमें मेक श्योर करना है कि हम इन्हें देखेंगे. आई नो माई ओनली टास्क वुड बी टू मेक यू नो कंपेल कि आप जाओ और ये मूवी इंजॉय करो. यही मेरा काम होगा इन 2 घंटे में, फ्राइडेज 12:30 से 2:30 तक. बट फिल्मों से थोड़ा हटते हैं और अपने फाइनेंसिस के बारे में बात करते हैं, बिकॉज दिस सेगमेंट इज ब्रॉट यू बाय माई टाइम इक्विटी लेड बाय CPA सुधीर पाई, जो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स और फैमिलीज को टू बिल्ड स्मार्टर फिनेंशियल स्ट्रैटेजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट. तो चाहे आप प्लान कर रहे हो लॉन्ग टर्म वेल्थ रिटायरमेंट, या फिर सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हो जनरल डेज के साथ साथ, तो फिर माई टाइम इक्विटी विल ऑफर यू पर्सनलाइज सॉल्यूशंस डिजाइंड अराउंड योर गोल्स. यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज mytimeequity.com और कॉल 4697021272 टुडे. और दैट नंबर अगेन 4697021272 टुडे. कीप लिसनिंग टू फनीशिया रेडियो. दिस इज रमिता.

You're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. This is a Filmy Friday with me, Rumita. और आज हम बॉलीवुड के ना हर रंग की बात कर रहे हैं, यानी कि नए फिल्मों की रिलीज की तो बात हो ही गई है, वक्त है थोड़ा सा फ्लैशबैक जाने का, यानी कि द टाइम इज फॉर फिल्मी फ्लैशबैक। चलिए, टाइम मशीन में अगर हम बैठे तो चलते हैं 2001 में, एंड one movie released which actually changed everything, and that movie is Dil Chahta Hai. Ek aisi film hai jisne sirf fashion ya music hi nahi badla, friendship ko dekhne ka yaar nazariya hi badal diya hai. I don't know about you, but wo teen yari, teeno ki yari, wo jo combination hai aur teen dost bilkul ek dusre se ekdam hi alag, ye jo pura ye Dil Chahta Hai ke concept tha na, it actually made me feel and make me understand यार दोस्ती आखिर होती क्या है, और suddenly सारे मिलके गोवा प्लान करना, और actually में गोवा सबका ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका था, अब रोड ट्रिप्स दैट बिकेम अ थिंग, और हर दोस्ती में हम ढूंढ रहे थे कि कौन है आकाश, कौन है समीर, और actually में कौन है सिड। तो आज का सवाल आपसे एक सिंपल सा है कि अगर आपको एक बॉलीवुड फिल्म दोबारा थिएटर में देखने का मौका मिल जाए तो व्हाट वुड दैट बी। स्टूडियो का नंबर इज 9722355555। कॉल मी एंड टेल मी व्हिच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच ऑन द इन द थिएटर्स येट अगेन।

0: चाहता है।
1: सिंपल सा सवाल किया था कि अगर फ्लैशबैक में अगर जाए, और नहीं फ्लैशबैक नहीं, अगर थोड़ा सा अपने अंदर बॉलीवुड कीड़ा अगर आप जगा दे, तो कौन सी ऐसी मूवी है जो दोबारा रिलीज हो तो आप झट से टिकट काट के देखने जाओगे। और सईदा जी ने कॉल किया और मुझे बताया कि उनका दिल चाहता है कि वो दिल चाहता ही देखे, क्योंकि है ही थी ऐसी यार मूवी। इनफैक्ट थी क्यों, अभी भी है, अभी भी अगर जो जब ओटीटी में हमें नज़र आता है कोई भी क्लिपिंग इसका, या फिर हम यूट्यूब में देखते हैं कि कुछ नो शॉर्ट्स एंड ऑल में आ जाते, वी कैन नॉट स्किप इट। आई मीन आई कांट, एटलीस्ट सच वॉज द इफेक्ट ऑफ दिल चाहता है। यू आर लिसनिंग टू 104.9 एफएम फनीशिया रेडियो, दिस इज रुमिता, एंड इफ राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू मी, यू मतलब इफ यू आर अ बिजनेस ओनर इन टेक्सास, देन दिस इन्फॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली फॉर यू, बिकॉज फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन, तारा कमर्शियल एनर्जी विल बी प्राउडली सर्विंग यू एंड योर बिजनेस, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली वॉट दे हैड बीन डूइंग सिंस 2002, यानी कि कंपिटेटिव रेट्स के साथ साथ रिलायबल सर्विस और कस्टमाइज्ड एनर्जी प्लान्स। फॉर दैट यू नीड टू कॉल 844-428-2808, दैट्स 844-428-2808, और यू कैन सिंपली विजिट ताराएनर्जी.com।

221 by the studio clock. You're listening to 104.9 FM Phoenicia Radio. चल रहा है फिल्मी फ्लैशबैक और सवाल बहुत सी सिंपल सा था कि अगर कोई भी फिल्म री रिलीज हो आज की डेट पे, कोई भी पुरानी फिल्म, तो कौन सी फिल्म ऐसी होगी कि आप फिर से टिकट काट के देखना चाहोगे. और बहुत सारे कॉल्स के साथ साथ एक कॉल ऐसा आया है जो नरेंद्र जी ने किया था अभी अभी, और उनका जो चॉइस ऑफ मूवी है दैट इज गजनी. बट उनका एक कंडीशन भी है कि अगर भाई री रिलीज हो तो भाई हैप्पी एंडिंग कर देना, ताकि पता चल जाए कि एक्चुअली में संजय सिंघानिया आमिर खान ही था. आई नो नरेंद्र हाउ इट फील्स. और हम कभी भी इस ट्रॉमा से निकल नहीं पाएंगे कि कभी अभी भी असीन को पता नहीं चला दैट इट वॉज एक्चुअली आमिर खान. कीप लिसनिंग टू फनीशिया रेडियो बिकॉज द फन इज जस्ट ऑन गोइंग.

27 by the studio clock and you're listening to Filmy Friday with me, Rumita. But ढाई बजने वाले हैं, यानी कि मेरा टाटा बाई बाई बोलने का टाइम आ गया है. लेकिन जाने से पहले आपको एक विशेष टिप्पणी दे के चलूं, विच इज प्रेजेंटेड बाई पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. क्या आपको पता है कि आपके जो मसल्स हैं ना, विच बिकम फास्टर, आई मीन वीकर फास्टर दैन योर बोन्स एज वी एज. जी हाँ, क्योंकि लॉस ऑफ मसल है ना, कि बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में शुरू हो जाता है इन योर अर्ली थर्टीज, और हम एज के साथ साथ वो और भी बढ़ने लगती है. तो एक मसल हेल्थ सपोर्टिव डाइट या आपके यू नो बैलेंस डाइट, ताकि आपकी मोबिलिटी भी अच्छी रहे विथ योर ओवरऑल हेल्थ, इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो टिप्पणी याद रखना. जाने से पहले थोड़ा सा ज्ञान देके चलती हूँ. फिल्मों के बारे में नहीं हो तो क्या हुआ, आपके हेल्थ के बारे में तो है, और मैं ख्याल रखती हूँ आपका, ऐसा नहीं है. स्टे ट्यून्ड टू फनीशा रेडियो. मिलूंगी मैं अगले हफ्ते. दिस इज रुमिता साइनिंग ऑफ फ्रॉम फिल्मी फ्राइडे टुडे विथ द अगला गाना जो कि मैं प्ले करने वाली हूँ, बट somehow the entire thing is not happening properly. Haan, abhi it is done. Stay tuned and bye-bye.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
4: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
7: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
6: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
7: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपर हिट।
8: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
9: लिया।
8: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
9: नहीं आया।
8: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है। इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
10: Visit www.sanadainc.com today.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
15: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
16: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
15: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
16: वेट, व्हाट?
17: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
18: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
17: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
19: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
2: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 Insurance Solution.
9: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
10: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
9: कैसे?
10: पेज 3 ईटरी?
9: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
10: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
9: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
14: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
20: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फोनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

फन एशिया रेडियो सुन रहे हैं आप 104.9 FM और मैं हूं किरण आपके साथ. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. ढाई बजे से लेके पांच बजे तक मंडे थ्रू फ्राइडे मैं रहती हूं आपके साथ. आप भी मेरे साथ रहते हैं 9722355555 के थ्रू. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी दिस आफ्टरनून. थैंक यू रिमिता फॉर एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल शो एज ऑलवेज. अच्छा जी, बस अभी तीन बजे से लेके साढ़े चार बजे तक लेके आऊंगी आपके लिए किड्स जंक्शन. किड्स जंक्शन में आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाली हैं, लेकिन वो जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि आज क्या स्पेशल होने वाला है किड्स जंक्शन में. बट बच्चा पार्टी रेडी हो जाइए, बिकॉज एज सून एज वी एंटर किड्स जंक्शन यू विल बी एबल टू गिव मी अ कॉल एंड रिक्वेस्ट योर सॉन्ग्स. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल मी राइट आफ्टर 3 PM.

0: If you are on an H-1B, F-1 या फिर L-1 visa or there are any other non-immigration immigrant visa पे हैं आप and you're looking for a path to US permanent residency, तो फिर the law offices of Seema Mehta are here to help you. Seema Mehta, attorney Seema Mehta and her experienced team specialize करती है जी exclusively in immigration law, including EB-5 investor visas program, family and employment visa, perm labor certification as well as US citizenship. और मजीद आपको इन हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उनको ईमेल भेज सकते हैं एंड देयर टीम विल गेट बैक टू यू विद द आंसर्स राइट अवे. और क्या है वो ईमेल आईडी वो बताते चलें आपको, info@seemamehtalawfirm.com. वंस अगेन दैट इज info@seema.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
5: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
6: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
7: हाँ.
6: घर रिलोकेट करनी है?
7: हाँ.
6: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
7: हाँ भाई हाँ.
6: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
8: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
9: मामू देखो क्या हो गया.
10: ओ क्या हो गया?
9: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया. और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
10: ओए जर्मन का कमाल है.
9: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
10: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार.
11: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
12: तारा वो तारा हर तारा.
13: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
14: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
15: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
14: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
15: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 945-527-0897 और विजिट astrologereeshwar.com.
7: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
16: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
17: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday,
16: all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
18: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM

दिस इज 104.9 FM Fun Asia Radio Kids Junction सुन रहे हैं हाँ आप ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. मैंने आपको बताया था आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगी. वी आर हैविंग अ चिल्लर पार्टी हियर ऑन किड्स जंक्शन दैट विल स्टार्ट एट अराउंड 4 PM जहां हमारे साथ कनेक्टेड होंगी हमारी वेरी स्पेशल समर प्रोग्राम आरजे या समर ब्रेक आरजे आप उन्हें कह लीजिए बिकॉज एवरीबडी इज ऑन ब्रेक एंड एवरीबडी वॉन्ट्स अ लिटिल बिट ऑफ चिल. सो राइट हियर वी आर गोना ब्रिंग दैट चिलर पार्टी फॉर यू guys kids who are listening keep listening to us I have lots of beautiful music and lots of party themes round up for you but before that I must tell you 972-235-5555 is the number to the studio this is your time to give me a call or you can request your favorite song you can but my only request is guys make it a like a Hindi or a Bollywood song so that everyone who's listening to Fun Asia can enjoy your choice just as much as you're enjoying it you remember the number right 972-235-5555

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
1: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
2: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
1: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
4: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन। आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड।
5: एक्सक्यूज मी, इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल,
4: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल।
5: ओके देन, Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
4: And what's so special at Neon Cactus?
5: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
4: Not bad.
5: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
4: Okay, this I didn't expect from you.
5: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
6: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Mere kal wale khane mein dosa. आने वाले खाने में डोसा।
3: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
11: Pan Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali और साथ में शहर की best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
3: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121. और कस्टर जंक्शन।
12: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
13: इट्स लॉसन।
12: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
13: इट्स लॉसन।
12: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
14: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
15: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
16: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
17: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
18: हाँ।
17: घर रिलोकेट करनी है?
18: हाँ।
17: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
18: हाँ भाई हाँ।
17: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
19: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide, हर मूव का perfect solution. Visit sflworldwide.com और call 1-800-691-2335.
3: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
16: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
3: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas. We got

0: a firecracker.
1: All right, and this is going out to all the parents. कोई आपका इवेंट आ रहा है जैसे कि वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग और एनी अदर स्पेशल इवेंट दैट यू वांट टू सेलिब्रेट, बर्थडे पार्टी आपने कोई बच्चों की सेलिब्रेट करनी है, तो बिफोर यू स्टार्ट स्ट्रेसिंग अबाउट वेन्यू एंड डिकोर एंड केटरिंग, ये सब कुछ कहाँ से होगा, द लिटिल डिटेल्स ऑफ द इवेंट, लेट मी टेल यू, वैनेसा इवेंट्स इज हु कैन टेक केयर ऑफ all your choti choti baatein and pareshaniya so that you can enjoy your event and make beautiful memories, because Vanessa Events makes planning simple by bringing everything together in one place. Venue selection and beautiful decor by signature events to photography, hospitality and delicious catering exclusively by the renowned Basera Grand. Taki, jaise maine kaha, aap apni event ko enjoy kijiye, make some beautiful memories and let Vanessa Event take care of the rest. They are your celebration partner. You have any question, give Hari Basera a call. That number is 469-442-8770. 469-442-8770 is the number, Hari Basera of Vanessa Events. Give them a call.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Heere moti, main na chahu.
7: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
8: शक्ति, संस्कृति और समर्पण की एक यादगार शाम आपका इंतजार कर रही है। इस सैटरडे 11 जुलाई शाम 7 से 9 बजे अपने पूरे परिवार के साथ आइए कृष्णा हेरिटेज सेंटर शंखस्थापना महोत्सव में। एक भव्य 11 एकड़ कैंपस की शुरुआत का जश्न मनाइए, जहां बनेगा कृष्ण टेंपल, गौशाला, फ्री स्कूल, इवेंट्स हॉल और रेस्टोरेंट। शाम को और भी खास बनाएंगे, गौ पूजा, नरसिम्हा यज्ञ चैंटिंग, किड्स मेला, भजन क्लबिंग और सबके लिए फ्री डिनर फीस्ट। माइंस पार्क ऑपोजिट कृष्णा हेरिटेज सेंटर 7082 Road.
9: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing, no hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform real-time rates compare karta hai, taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
10: सुनो, कल बहुत काम है। पहले grocery, फिर पूजा का सामान, gifts भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं cooking नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा dinner करके आएंगे।
11: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
10: कहाँ?
5: Foodistan in Aubrey. Fresh grocery, halal meat, puja essentials, live pani puri, fresh ganne ka juice, bakery items, plus lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
12: Foodistan in Aubrey. Everything desi. One place, one vibe.
13: एक बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
14: क्या?
13: सैलरी बंद हो जाती है.
14: और बिल्स बंद नहीं होते.
13: Exactly. इसलिए स्मार्ट लोग वेल टैक्टिक्स से स्ट्रैटेजी बनाते हैं.
14: मतलब?
13: ऐसी स्ट्रैटेजी जहां इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता.
12: The wealth tactic. Smart strategy for your retirement years. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
15: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
16: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath, naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, X-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
17: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
18: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
19: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
18: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
19: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
18: सच में सब संभालेंगे?
19: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
12: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
20: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

0: यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस दिस आफ्टरनून. दिस इज योर किड्स जंक्शन ऑन आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको, बहुत ही स्पेशल आज कुछ होने वाला है. टुडे इज अ चिल्लर पार्टी दैट वी आर सेलिब्रेटिंग राइट हेयर ऑन किड्स जंक्शन. एंड हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत प्यारी सी छोटी सी नन्नी मुन्नी सी आरजे, जो आपके लिए आज प्ले कर रही हैं योर समर ब्रेक आरजे. लेट्स वेलकम हर.
1: हाय एवरीवन, माय नेम इज आविया एंड टुडे आई एम योर स्पेशल समर ब्रेक आरजे ऑन द चिलर पार्टी फन एशिया रेडियो. यूजुअली आई एम लिसनिंग टू द रेडियो इन द कार, बट टुडे आई एम एक्चुअली टॉकिंग ऑन इट. I am so excited and I hope you have as much fun listening as I am having to be here. Let's get started with the awesome song.
0: Absolutely, and we are extremely excited to have Avia with us today till 4:30 p.m. Me and Avia will be your host together.

0: तो बच्चों के बारे में कोई कॉन्वर्सेशन हो रही हो और पेरेंट्स के बारे में बात ना की जाए, दैट इज जस्ट नॉट हैपनिंग. वी हैव टू टॉक अबाउट पेरेंट्स एंड आई एम श्योर एवरी चाइल्ड हैज अ स्टोरी अबाउट देयर पेरेंट टू टेल अस. सो आव्या, व्हाट इज योर पॉइंट ऑन दैट और टेक ऑन दैट?
1: आई थिंक पेरेंट्स हैव सम फनी रूल्स. When they're talking on the phone, they say just 1 minute. But when I'm watching my favorite show, they suddenly remember it's time to turn the TV off. Does that happen to your house too? Here's another fun song just for you.
0: Well, I don't have anything to say about that, so let's take you to the next song.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
6: वेट, इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं ही तो।
8: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
9: इट्स लॉसन।
8: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
9: इट्स लॉसन।
8: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
10: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे, 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
11: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
12: बैठ जाऊँ? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
13: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
12: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
14: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
15: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
11: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
16: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
17: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
18: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
19: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
18: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
2: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
2: ये क्या होता
5: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
4: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
2: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
1: You're earning well, but are you paying more taxes than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG FinTax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG FinTax, plan smart, save more.
3: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
15: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
15: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
11: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program.
7: Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
9: कितने आदमी थे?
20: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

फन एशिया रेडियो सुन रहे हैं आप. आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में मैं किरण आपके साथ. व्हाट एन अमेजिंग किड्स जंक्शन सेगमेंट वी हैड टुडे. चिल्लर पार्टी में हमारे साथ आज मौजूद थी हमारी समर ब्रेक आरजे, दैट वाज आविया. एंड आविया वाज एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड आई हैड सच अ लवली टाइम. इफ यू वांट टू बी आवर समर ब्रेक आरजे तो फन एशिया पे लॉग ऑन कीजिए. फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे देखिए हमारी पोस्ट होगी समर आरजे या चिल्लर पार्टी को लेके. उसके कॉमेंट्स में जरूर अपना नाम लिखिए, साथ ही साथ टेल अस योर ग्रेड एंड योर एज एंड यू माइट जस्ट नेक्स्ट बी आवर नेक्स्ट आरजे हु विल बी होस्टिंग दिस चिल्लर पार्टी विद मी राइट हियर ऑन किड्स जंक्शन एट फन एशिया रेडियो विद सुनहरी किरण. अच्छा जी, ये तो हुई आपके लिए ये बात. और अब मैं आपको बताने लगी हूँ कॉन्सर्ट के बारे में. विशाल शेखर आ रहे हैं, ही विल बी लाइव इन डैलस. दिस इज द सुपर हिट टूर दैट दे आर ब्रिंगिंग टू डैलस एंड हैपनिंग ऑन संडे जुलाई द 12th. कर्टिस कलवल सेंटर गार्लैंड में हो रहा है जी ये. अगर आपने अब तक अपने टिकट्स नहीं लिए तो कोई बात नहीं, अभी भी दो दिन बाकी हैं. वैसे तो अब तक ले ही लेने चाहिए थे आपको, बट इट्स ओके, इट्स ओके. यू कैन लॉग ऑन टू कैश पटेल प्रोडक्शन .com. KASH is cash. CashPatelProductions.com पे लॉग ऑन कीजिए. और जब आप चेकआउट कर रहे हो तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज द प्रोमो कोड फनेशिया FUNASIA. दैट विल हेल्प यू गेट 30% ऑफ योर टोटल ऑर्डर. बिकॉज आप फनेशिया के इतने प्यारे लिसनर हैं, इतने इंपॉर्टेंट लिसनर्स हैं हमारे. दिस इज आर गिफ्ट टू यू, 30% ऑफ वेन यू यूज द प्रोमो कोड फनेशिया. लॉग ऑन टू CashPatelProductions.com. दिस इज हैपनिंग. विशाल एंड शेखर लाइव इन concert, the super hit tour on Sunday, July the 12th at the Curtis Culwell Center. Aur kya maza aayega, I'm sure wo aapka karenge. Sach mein, swag se swagat.

एंड विद दैट इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द करेंसी अपडेट. लेकिन करेंसी अपडेट से पहले मैं आपको आपके लिए एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सबको एक ऐसा डॉक्टर चाहिए, एक ऐसा PCP चाहिए जो हमारी बात सुन सके. हम जब उन्हें कोई बात कहते हैं या उनके साथ अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो वी वॉन्ट समन हु यू नो ट्रीट्स अस लाइक अ ह्यूमन एज वेल एज अ पेशेंट, तो हमारी बात सुने, हमारे मसले जाने. तो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज दैट प्लेस फॉर यू, बिकॉज हेयर एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स, बिकॉज दे वॉन्ट टू टेक देयर टाइम अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ. एंड ऑफकोर्स 30 मिनट्स इज all it takes to complete your annual physical, anxiety care ho, fibro scan for alcohol related liver concerns ho, vitamin B12 deficiency testing ho, or any other issue that you are going through. Passion Health Primary Care is here to help you, and for you, your family, for the community, they have been serving and they are very passionate about your health, treating you in the best way possible. Aaj hi aap apna schedule karein appointment by calling them, and that number is 214-666-6259. Passion Health Primary Care ka number hai. Unhein call kijiye, book your appointment and get your, you know, health under control. Have those 30 minutes with them and enjoy your health care.

0.90 पे स्टैंड कर रहा है। बांग्लादेशी टका 123.27 बांग्लादेशी टकाज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर। सफी, दिस इज गोइंग आउट टू यू।

फलक से चांद तारे लाने के लिए मुझे नहीं पता कितने पैसे लगेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानना जरूरी है कि यूएस डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. फ्राइडे जुलाई द 10th 4:50 PM इन द स्टूडियो एंड अकॉर्डिंग टू xrates.com यूरो आज ट्रेड कर रहा है 0.87 पे, जबकि ब्रिटिश पाउंड इज ट्रेडिंग एट 0.746. इंडियन रुपी 95.52, जबकि कैनेडियन डॉलर 1.41 पे ट्रेड कर रहा है. पाकिस्तानी रुपी 278.14 पाकिस्तानी रुपीज़ ट्रेडिंग फॉर वन यूएस डॉलर, जबकि नेपाली रुपी इस वक्त 152

और इसी के साथ गोल्ड प्राइस अपडेट का टाइम. और आज है जी अकॉर्डिंग टू गोल्ड प्राइस डॉट ऑर्ग इस वक्त है गोल्ड प्राइस पर आउंस $4,108.44 जबकि एक ग्राम सोने की कीमत राइट नाउ इज $132.09. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में आज 75 सेंट्स की कमी देखने में मिली जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $23.45 की कमी देखने में मिली. But that's pretty much all that I have for you where your finance is concerned right here on Sunehri Kiran. When we will come back from this song, I will wrap up with a traffic update के इस वक्त अगर आप रोड्स पे हैं तो डालस की रोड्स पे क्या नजर आ रहा है. बने रहिए मेरे साथ. I still have about 5 minutes. I'm 6 minutes with you. Drop the bell.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
8: Calculating route, rerouting.
7: Are, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
8: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
7: Kyun?
8: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials, authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
7: Achha, to seedha wahi le chalo.
9: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
8: Your new destination has arrived.
10: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury, or excitement. Sub, ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
11: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
12: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
11: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
12: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
13: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स. पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज. ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस. किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
14: Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
15: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
16: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
15: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग. अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स. जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
17: प्लीज डोंट सी यू यूज place again. I'm tired of the same food.
18: Excuse me. It's called being loyal.
17: It's called being predictable.
18: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
17: And what's so special at Neon Cactus?
18: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, zabiya halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
17: Not bad.
18: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
17: Okay, this I didn't expect from you.
18: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
19: Is shehar ko hua kya? Kahin pe अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों. तो वक्त है सही दिशा का।
20: पंडित रामनाथ जी जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
21: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
22: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिजल्ट्स में वेरी।
23: मामू देखो क्या हो गया।
24: ओ क्या हो गया?
23: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
24: ओए जर्मन का कमाल है,
23: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
24: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
21: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
25: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.

Hey, you

आज का सीन सिंपल है, म्यूजिक मस्ती और मैं। नाम तो सुना होगा, नवनीता। गाने होंगे, गॉसिप होगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़े गेम्स, थोड़ा नया स्वैग होगा, मतलब फुल

0: I love the plan. Thank God it's Friday with me, Navneeta. 5 to 8, straight from the heart.
1: Thank God it's Friday. Thank you, दोस्तों, tuning करने के लिए 104.9 FM Fun Asia Radio पर. मैं हूँ आपकी host Navneeta, आ चुकी हूँ. And actually मैं भी दिल से कहती हूँ Thank God it's Friday. And I know आप भी दिल से ही महसूस करते हैं और दिल से ही ये आवाज़ ज़रूर निकलती है on a Friday evening. Thank God it's Friday. तो bang on है मेरा ये शो आपके लिए, क्योंकि I say I have dropped the weekend early. कल क्रे क्यू वेट करना, फ्राइडे इवनिंग से ही ऐसा लगने लगता है वीकेंड आ चुका है. सो यस, द वीकेंड वाइब इज ऑन बिकॉज आई एम योर होस्ट ऑन फन एशिया रेडियो, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन. एंड थैंक यू टू किरण, अ बिग शाउट आउट किरण, व्हाट एन अमेजिंग शो. ये आपका साथ जो साथ रहता है 3 to 5 का, अमेजिंग ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून एज वेल, क्योंकि मुझे मिलने का मौका मिलता है किरण से इसी दिन, क्योंकि इसी दिन मैं आती हूँ, अगले दूसरे दिनों में मैं नहीं आती हूँ. एंड व्हेन आई सी हर आई जस्ट गेट अ स्माइल एंड यू कैन And hear her smile always on the radio for sure. चलिए, आपका और मेरा साथ ये 8 तक है, तो 5 to 8 straight from the heart लेकर आई हूँ आज का शो भी. और हार्ट से याद आया एक बात जरूर है, गुफ्तगू करते रहिए थोड़ी थोड़ी दोस्तों से, गुफ्तगू करते रहिए थोड़ी थोड़ी दोस्तों से, जाले लग जाते हैं अक्सर बंद मकानों में.

यू कुड फील हियर इन द सॉन्ग टोटल धमाल है. धमाल की किश्तियां भी एक के बाद एक निकली हैं. दिस द फोर्थ धमाल दैट इज गोइंग टू बी आउट. सो दिस सॉन्ग फोर्थ इंस्टॉलमेंट ऑफ द धमाल सीरीज. इसमें एज ऑलवेज अजय देवगन है एंड रितेश देशमुख एंड सो मेनी कास्ट. और यही होता है जब धमाल आती है तो एक के बाद दूसरी भी बनती है, दूसरी के बाद तीसरी, फिर चौथी, पांच भी आ जाएगा. ये जो फॉर्मूला प्रूव हो जाता है और फॉर्मूला सक्सेसफुल हो जाता है, टोटल स्लैपस्टिक कॉमेडी कह लीजिए, दिमाग को साइड में रख के कॉमेडी कह लीजिए, जैसा भी कॉमेडी कह लीजिए, वो जब आप चालू कर लेते हैं तो फिर क्या है, जस्ट गो एंजॉय, डोंट थिंक अबाउट इट एंड जस्ट बी योरसेल्फ. जैसे कि झेलू राम, यू नो, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट. आप ज़्यादा सोचने लगे कि ये क्यों बोला और ये क्यों हुआ, देन हाउ विल यू लाफ लाइक नोबडी इज वॉचिंग. जैसे झेलू राम बोलते, नमिता पता है आजकल तो इंडिया में हमारे ऐसा हो रहा है, हेलमेट नहीं पहनेंगे, पहनेंगे ही नहीं, लेकिन मोबाइल फोन पर कवर, स्क्रीन गार्ड ज़रूर लगाएंगे. सर फूट जाए तो फूट जाए, लेकिन मोबाइल नहीं टूटना चाहिए. तो या कैन यू बिलीव, हमारी क्या इंपॉर्टेंस हो गई है, मोबाइल के लिए तो जान निकल जाती है गाइस. सर फूट जाए इट्स ओके यार, हु केयर्स, है ना.

ब्यूटीफुल सॉन्ग है ना, मुसाफिर कफ़े हिस का नाम है, एंड विक्रांत मासे हैं, वेदिका एंड माहिमा, दिस इज़ अ ब्रांड न्यू, कुछ नया हो जाए में ब्रांड न्यू गाने होते हैं, कभी कभी आपने सुने नहीं होते, सो दैट इज़ द टाइम व्हेन यू आर इंट्रोड्यूस टू अ ब्रांड न्यू सॉन्ग. जैसे मैं कहती हूँ, हमेशा साइकिल होता है कोई भी गाने का, एज सून एज द ब्रांड न्यू सॉन्ग इज़ आउट, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू गेट इंट्रोड्यूस टू, यू लाइक इट, नॉट लाइक इट, लाइक इट तो लगता है हाँ नाइस, अच्छा था जो भी ब्रांड न्यू गाना था, एंड देन यू हियर इट टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स, 10 times, and you are like, बहुत अच्छा है, एंड देन यू लूप में आप सुनने लगते हैं, दैट इज़ द पीक ऑफ दैट सॉन्ग, क्योंकि इतना सुन रहे हैं, यू लाइकिंग इट सो मच. पठान के जब गाने ब्रांड न्यू फर्स्ट टाइम निकले थे, झूमे रे पठान, एंड देन यू रियली ग्रूव्ड ऑन दैट, एंड देन इट बिकेम ऑन द हाइएस्ट लूप. और फिर जब इतना लूप में सुन रहे होते हैं, तब मेरे पास कॉल्स आ रहे होते हैं, नवनीता कैन यू प्ले दिस सॉन्ग, प्ले दिस सॉन्ग, एंड देन उसके बाद थोड़ा ब्रांड न्यू और दूसरे गाने निकल जाते हैं, तो इनका जो प्लेइंग लूप है वो कम हो जाता है, धीरे धीरे धीरे धीरे फेड आउट हो जाते हैं गाने. पर इसी से टॉप 10 गाने ऑफ द वीक और टॉप गाने मिलते हैं. पर जो मैं बोल रही थी, पर जो गाने जो बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो लूप से निकल जाए, बट वो हमारे जो मेमोरी में इम्पॉर्टेंट गाने रह जाते हैं, दे आर मिलियंस ऑफ सॉन्ग्स, बट दे आर सम सॉन्ग्स यू वुड लव इररिस्पेक्टिव आप कब सुन रहे हैं, वो गाने हिट गाने हैं, कभी भी आप सुने, आप 10 साल बाद सुने, 6 साल बाद सुने, 4 महीने बाद सुने, और रोज़ नहीं सुन रहे, लूप से बाहर हो गए, लेकिन फिर भी वो गाने जब भी बजते हैं वो अच्छे लगते हैं. तभी तो अभी जो गाने बज रहे हैं, अभी तो ब्रांड न्यू गाने हैं, पर जब ब्रांड न्यू नहीं है तो भी जो गाने बज रहे हैं वो इसलिए बजते हैं वनिशा रेडियो पर, बिकॉज आई नो ऑल माई लिसनर्स लव इट इररिस्पेक्टिव वेदर दे हैव नॉट हर्ड फॉर सम टाइम, हर्ड इट, और यू नो आज ही सुबह गुनगुना रहे थे, शाम को गाना बज गया रेडियो पर. ये वाला गाना सुनिए, फिर बताती हूँ कौन सी फिल्म का है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात इस फिल्म के बारे में है.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
3: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday,
2: all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
4: Hello, Texas Parivar. Where do you go when bank says no? Are you self-employed? And are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co. at 214-845-4189. Kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. And this 926641.
5: जीनी हुकम मेरी आखा, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
6: मिराज लाउंज चलिए मेरी आखा, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
5: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
6: नो प्रॉब्लम आखा, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
5: और एंटरटेनमेंट,
6: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
5: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
6: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
7: जिंदगी एक रंगमंच है
8: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
2: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com।
9: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
10: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
11: लिया।
10: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
11: नहीं आया।
10: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
12: Visit www.sanadainc.com today.
13: भूख लगी,
14: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
15: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
16: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट lunch ambience and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to page 3, hub 121 McKinney.
17: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था। ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
2: कॉल नाउ टू 833 गेट ओमर, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ ओमर ख्वाजा। आपका हक, उनके जिम्मेदारी।

0: It's is coming your way.
1: Vishal and Shekhar.
2: Here we go.
0: That's right. Vishal and Shekhar live. Get ready for an electrifying evening filled with songs you've danced to, celebrated with, and fallen in love listening to. Sunday, July 12th at the Curtis Culville Center in Garland. Tickets on sale now. CashPatelProductions.com. The Super Hit Tour with Vishal and Shekhar.
3: Use code FUNASIA and get 30% discount.
4: Swag se karenge sabka swagat.
5: वेलकम बैक. स्वागत नहीं करोगे मेरा, स्वागत है आप सबका. मेरा तो स्वागत है ही, बिकॉज मैं तो शो ही कर रही हूँ, बट आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ऑन फन एशिया रेडियो. दोस्तों, ये ब्रेक पे जाने के पहले आई वाज प्लेइंग अ गाना कॉल्ड हानिया, और ये फिल्म अल्फा का गाना है. उसमें आलिया भट्ट, शर्वरी हैं. ओ माय गॉड, आई हैड द प्रिविलेज ऑफ वॉचिंग दिस मूवी दिस वीकेंड. सुपर डुपर. ये जो पूरी स्पाई यूनिवर्स में अ फीमेल एडिशन हैज़ हैपन आफ्टर द पठान, आफ्टर द यू नो हमारे जो सिकंदर साहब हैं, और यहाँ पर इवन वॉर ऋतिक रोशन, नाउ वी हैव कबीर नज़र आते हैं इस फिल्म में भी एज अ कैमियो. और अल्फा में आलिया भट्ट इज़ द अल्फा. ओ माई गॉड, आई थिंक शी डिड ब्रिलियंट. और शर्वरी आलिया की जो केमिस्ट्री नज़र आई है इसमें, इट इज़ सुपर डुपर. एंड जो फाइट सीन्स है, मैंने कहीं पढ़ा था लास्ट वीक फ्राइडे को, मैं बोली थी मैं देखूंगी फिल्म, बट रिव्यूज़ में आया है शी प्रॉब्ली डिडंट डू सच अ गुड जॉब विथ हर एक्शन. ओ नो, शी विथ सच अ पतीत बॉडी, जिस तरह उसको पकड़ पकड़ के उठा के फेंक रहे हैं, द वेन शी गेट्स अप, आई मीन यू नो देर आर बॉडी विच आर पतीत बट दे कैन रियली स्टैंड एंड दे कैन फाइट. कराटे एंड ऑल द the fights that happen, China, Japan, वहाँ के you know the structure is only very small, but martial arts teaches you to give it back in fight. It doesn't have, you don't have to really be very bulky to be able to fight. So she's done an amazing job. So I will give her 10 out of 10 stars. 5 stars का मामला होता है, but मैं तो 10 marks लूँगी, और 10 ही का 10 में से 10 दूँगी to Alia Bhatt. Super duper. I just loved what she did. सैम आपकी पसंद.

0: Beautiful, beautiful song, Naja Naja for you. And you are listening to 104.9 FM, Fun Nature Radio. बिल्कुल नहीं, अभी नहीं जा रही हूँ मैं, अभी तो यहीं पर हूँ, अभी अभी तो आई हूँ, अभी अभी कैसे जाऊँ. 5 स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट रहता है आपका मेरा साथ, तो वो तो बिल्कुल आपके साथ निभा कर ही जाऊँगी. और साथ निभाने में ना तंदूरी फ्लेम बहुत ख़ास है. आपको किसी के साथ जाना है, सो जस्ट गो इन्जॉय देयर फूड एज़ वेल एज़ द कंपनी जिनके साथ भी आप जाए इन गार्लन. एंड दे दिस इज़ अ न्यू फ्लेवर डेस्टिनेशन फॉर ऑल स्पाइस लवर्स. दिस सर्व सिजलिंग तंदूरी प्लेटर्स, रिच करीज एंड ऑल योर नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स विद दैट होम स्टाइल पंच. फ्रॉम स्मोकी तंदूरी कबाब्स टू वेलवेटी करीज एंड फ्रेश हॉट नान, एवरी प्लेट फील्स लाइक अ सेलिब्रेशन. स्टेप इन टुडे एंड लेट तंदूरी फ्लेम सर्व यू द काइंड ऑफ मील दैट टर्न्स एन ऑर्डिनरी डे इनटू अ फीस्ट. तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट लोकेटेड इन गार्लैंड, एंड यस दे आर हियर इन गार्लैंड फॉर यू.
1: जिंदगी के कई रंग फनीशा रेडियो के संग.
0: So, we're 104.9 FM, Fanisha Radio. So, here we have this brand new movie, I think. Lekin abhi ye brand new nahi rahi hai. Gana, seriously, is carrying on for some more time because we are loving it.

ब्यूटीफुल, कितने बार भी गाना सुने ना, ये तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने कहा, द साइकिल ऑफ अ सॉन्ग एंड सच सॉन्ग्स रिमेन इन आवर जहन, आर मेमोरीज फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। कभी भी सुनते हैं वो गाने अच्छे ही लगते हैं। और कितने सारे गाने ऐसे भी होते हैं जो फ्लश आउट हो जाते हैं, विच डोंट स्टे, वी डू नॉट कनेक्ट टू दोज सॉन्ग्स एंड वी डू नॉट, इट डजेंट स्टे विद अस। लाइक देम, एवरी मूवी हैज सिक्स सॉन्ग्स। कभी कभी कुछ कुछ फिल्मों के तो छो के छो गाने ही बहुत अच्छे होते हैं एंड दे स्टे विद अस। बट समटाइम्स फुल फ्लेजेड मूवी में एक ही गाना होता है जो हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, और उसके बाद उसके और जो चार पांच गाने हैं, दे आर नॉट, दे डिडंट गेट इनफ ऑफ आर अटेंशन, बिकॉज प्रॉबली दे डिड नॉट, दे वर नॉट मेड वेल, और वी डिड नॉट कनेक्ट, वी इट डिड नॉट रेजोनेट। यू नो, कभी कभी आप सोचते हैं कुछ भी नहीं है लाइफ में और ऐसे ही कर लेते हैं और वो सबसे बड़ा हिट हो जाता है। समटाइम्स यू डोंट इवन नो वॉट इज समथिंग दैट बिकम्स वायरल। और कभी आप बहुत मेहनत करते हैं, बोलते हैं ये जो है मास्टर पीस है, मैंने जो बनाया ना, ये जब बाहर आएगा ना, फार फॉर टू टूटल टोटल वाव होगा। पर नहीं होता, क्योंकि वो इतना अच्छा रेजोनेट ही नहीं होता। सैड है। वैसी फिल्में जो बहुत पैशन के साथ बनाई जाती हैं और उनका हशर ऐसा होता है, इट इज़ सैड। बट यही है ज़िंदगी यार, हमारी ज़िंदगी हर अपने हिसाब से नहीं चलती ना, कभी चलती है कभी नहीं चलती है। चल जाए तो हम कहते हैं वाओ।

सुपर सुपर 104.9 FM फनी जॉय रेडियो सुन रहे हैं। वैसे बताया, किसी ने कहा होगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, होगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, छलकती आंखों को न पढ़ पाए तो अनपढ़ हो तुम। इमोशंस दिखता आपको आंखों में कि भागे चले जा रहे हैं बस अपने रोजारा जिंदगी में, इमोशंस नहीं, लोग क्या सैड है नहीं है, आपने किसी को हर्ट कर दिया या कोई बहुत वेट कर रहा है आपका कुछ रिएक्शन के लिए, कुछ भी नहीं। जो ऐसा ना कर पाए तो क्या कर लिया पढ़ाई करके, है ना, सोचने की बात है, सोच के देखिए। पर मेरे पास एक बहुत अच्छा सा एक कॉल आया एंड व्हेन आई सेड कि सारे गानों की एक लाइफ होती है, सम गाने जस्ट रेजोनेट सो मच विद अस कि वो जिंदगी भर के लिए हमारे साथ हो लेते हैं, लाइक साथी हैं, छूटता ही नहीं है उनका साथ। और ये वाला गाना उन्होंने याद दिलाया जो मैं बजाने वाली हूँ। उन्होंने कहा ये गाना तो भाई मैं क्या बताऊँ, आज पहनी भी है मैंने पुरानी जीन्स।

बात तौबा सुन रहे हैं 104.9 FM AGR रेडियो ऑन दिस तौबा तौबा। दोस्तों अब आप अपने सीट की कुर्सियाँ की बेल्ट बांध लीजिए, मतलब सीट की पेटियाँ और कुर्सियाँ की पेटियाँ, बट सीट की भी पेटियाँ ही होती है, बांध लीजिए। आ रहे हैं आपके रेडियो स्टेशन पर बिट्टू शर्मा, दिल्ली स्वैगर से बाजीराव बैटल क्राय, मुराद्स माइक्रोफोन और रॉकी रंधावास फुल वॉल्यूम हार्ट, नन अदर देन रणवीर सिंह हु हैज नेवर बिलीव्ड एंड एंटरिंग अ सीन क्वाइटली। धमाका हल्ला सब कुछ होता है इर्द गिर्द रणवीर सिंह के। बॉर्न ऑन 6th of July, रणवीर टर्न 41 years दिस ईयर। तो 6th of July को तो मैं याद थी नहीं, तो आज 10 July को मैं ये अगले हाफ एन आवर डेडिकेट करती हूँ रणवीर सिंह को, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग दिस अमेजिंग एक्टर एक्टर एंटरटेनर ऑल अराउंड ह्यूमन पावर स्टेशन टू सम ऑफ द बिगेस्ट फिल्म सॉन्ग्स। तो आपको सुनने मिलेंगे 6 tracks इनके, 5 lesser-known स्टोरीज शायद आपको नहीं पता हो उनके बारे में जो कुछ मैं बताने वाली हूँ। एब्सोल्युटली नो हाफ वॉल्यूम, फुल वॉल्यूम, फुल पावर, फुल ऑन रणवीर एट 41।

That was the Ava Yavei song, or ye thi introducing the world to Ranveer Singh as Bittu Sharma. दोस्तों वैसे स्टेपिंग अ लिटिल बैक फ्रॉम बिट्टू शर्मा, आपको बता दूं दिस पार्ट ऑफ माय शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटैक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द यूएस. वो ऑफर करते हैं इनोवेटिव फिनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. करना क्या है, फोन उठाना है, नंबर दबाना है 4699429888 या फिर विजिट कीजिए agfintax.com. तो ये जो बिट्टू शर्मा है ना, शायद आपको नहीं पता होगा या शायद पता होगा, जिनको नहीं पता है, रणवीर सिंह इज नॉट रणवीर सिंह, ही इज रणवीर सिंह भवनानी. दैट मेरे दिमाग पे एक क्वेश्चन आया कि इसका मतलब दीपिका पादुकोण माइट हैव बिकम दीपिका पादुकोण भवनानी और दीपिका पादुकोण दीपिका सिंह भवनानी. Anyways, that's up to them to decide. But Ranveer Singh is Ranveer Singh Bhavnani. उन्होंने shorten कर दिया था अपना ये screen name, क्योंकि उन्हें लगा कि यार ये तो बहुत लंबा नाम है, Ranveer Singh Bhavnani. Pronounce करते करते मेरी तो फिल्म ही निकल जाएगी. So he said easier होगा कि खाली मैं रहूँ Ranveer Singh, तो middle name और first name. और before he was delivering movie dialogues, Ranveer was actually writing advertising copy. जो वो लिखते हैं ना एडवर्टाइजमेंट में क्या बोलना है एंड ऑल, वो जो कॉपी राइटर होते हैं, और वो एक बहुत बड़े एजेंसीज के साथ काम करते थे. ONM इंडिया में बहुत फेमस है, GWT ऑन अकाउंट्स कनेक्टेड विद पॉन्स, गुड नाइट, नाम पता होगा. और फिर उस समय उनके एडवर्टाइजिंग डेज में ही सेज ही वॉज निक नेम्ड द राइम डॉक्टर. उस समय से ही एकदम कलरफुल ही है बिकॉज ऑफ हिज वे विद राइमिंग लाइन, एक लाइन उसके बाद दूसरी, यू नो, हम तो यू नो वाई, बिकॉज द स्काई सो हाई, यू डोंट नो हाउ टू मल्टीप्लाई एंड यू विल मैरी इन जुलाई, जैसे कि राइम है. एंड दैट्स हाउ ही वॉज. तो गली बॉय में जो उन्होंने म्यूजिक का करियर शुरू किया था, वो शायद यहीं से कहीं ना कहीं तो शुरू हो ही गया था.

ब्यूटीफुल 104.9 चुनर चुनर चुनर चुनर जब हवा होती है ना तब हमारी चुनर चुनर उड़ती है, लेकिन अभी तो यार ये गर्मी का हम क्या ही तो कर सकते हैं। पर अगर कुछ नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, हम अपना मूड तो बना ही सकते हैं बाय बाइंग सम स्पार्कलिंग डायमंड्स। मतलब कहाँ से मैच होता है, बट आई से इट इज़ अप टू यू व्हाट हाउ यू वांट टू चेंज योर मूड। सो इफ यू आर लुकिंग टू ऐड अ लिटिल स्पार्कल टू योर स्पेशल मोमेंट्स, हेड टू मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को। ये आपका डेस्टिनेशन है फॉर स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी दैट्स एलिगेंट, टाइमलेस एंड क्राफ्टेड टू शाइन, फ्रॉम ब्यूटिफुल रिंग्स एंड इयररिंग्स टू डैजलिंग नेकलेसेस एंड कंटेम्पररी डायमंड स्टाइल्स। फाइंड द परफेक्ट पीस फॉर एंगेजमेंट्स, एनिवर्सरीज, सेलिब्रेशंस और सिंपली ट्रीटिंग योरसेल्फ। एक्सपीरियंस कीजिए अनमैच क्राफ्टमैनशिप एंड ब्रिलियंस एट वन एंड ओनली वन मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स इन फ्रिस्को। और भूलेगा मत, डाउनलोड कर लीजिए उनका मालाबार गोल्ड एंड डायमंड मोबाइल ऐप फॉर द लेटेस्ट कलेक्शंस, अपडेट्स एंड मोर डिटेल्स। वैसे मालाबार को ऐसे नहीं कहना होता है, पर अनिल कपूर की जो वो उनकी एड है ना, मालाबार मालाबार गोल्ड एंड मालाबार, वो ऐसे बात करते हैं। तो जब भी मैं मालाबार बोलती हूँ ना, मुझे अनिल कपूर मेरे कान में बोल रहे होते हैं, नवनीता से मालाबार ऐसे ओके मालाबार। सो देयर यू गो, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड फॉर यू। वैसे हम बर्थडे मना रहे थे रणवीर सिंह का, एंड आपको मैंने एक फ़न फैक्ट भी बताया था कि उनका नाम रणवीर सिंह भवनानी है। ये कोई फ़न नहीं है, उनका फैक्ट है। बट ततर ततर आपने जो गाना लास्ट में सुना था गोलियों की रास लीला राम लीला से, और आपको एक क्विक ब्यूटीफुल सा इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन पूछती हूँ। बर्थडे क्विज, उनका बर्थडे मना रहे हम। रणवीर सिंह ग्रेजुएट किस में हुए, एक्टिंग में, फैशन डिज़ाइन में या टेली कम्युनिकेशन में? 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर, फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए, मुझे बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप, कि ग्रेजुएट किस में हुए।

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
3: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
4: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
5: It's Lawson.
4: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
5: It's Lawson.
4: Daddy, what is the law?
6: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
7: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food?